शुभ प्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। समय मिलाइए, इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का स्वागत।

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Sethabello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, समाचार अब आप सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस

श्रोता साथियों, जब भक्ति बाहरी आडंबरों से निकलकर सीधे हृदय में बस जाती है, तब मन स्वयं मंदिर बन जाता है और प्रभु का स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त के साथ भाव उनके देखते हैं, वैभव को नहीं। न चांदी की चाहत, न सोने का श्रृंगार, भोले के भक्तों को बस चाहिए उनका प्यार। जिस मन में बस जाए शिव का नाम, वहीं हो जाता है काशी और केदार धाम।

वृंदावन की गलियों में गूंजती बांसुरी की मधुर तान, यमुना तट की शीतल बयार और गोकुल की माखन सी मिठास, इन सब का स्मरण होते ही मन में नंदलाल भगवान श्री कृष्ण की छवि साकार हो उठती है। बाल रूप में नटखट तो युवावस्था में प्रेम और भक्ति के प्रतीक श्री कृष्ण का हर रूप भक्तों को आनंद और आत्मिक शांति प्रदान करता है।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें FM शिमला के साथ। अब पेश है मानस गान।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

0: मानस गान अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, ए हरिहरन और साथी संगीत सतीश भाटिया का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से लीजिए पेश है देशगान।

0: समूह स्वरों में देश का अन्न भी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा कल शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के

0: नमस्कार। एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा कल शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स, बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव नतीजे प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष को स्पष्ट बताते हैं। बिंदल कल शिमला में पार्टी के बुद्धिजीवी सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भावना, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 7 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक

0: राज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 MHz पर। 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चिंतन।
2: राजऋषि अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। वे मनु के प्रपौत्र तथा नाभाग के पुत्र थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति एवं अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की जाननी है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से अनासक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और 1 दिन पवित्र सलीला यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की महाभिषेक की विधि से समस्त विहित सामग्रियों के साथ विधिवत अभिषेक एवं पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत पारण करने की तैयारी करने लगे। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी भी उनके यहाँ

0: अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही स्वागतार्थ उठकर खड़े हो गए और यथा योग्य आसन देकर बैठाया। विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणत होकर भोजन के लिए अम्बरीश ने प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए यमुना जी के तट पर गए। स्नान ध्यान करने में इतना समय बीत गया कि द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया और कहा, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं करना भी है, इसलिए इस समय केवल जल पीकर पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके अम्बरीश ने मन में भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना जी से वापस आ गए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया तो दुर्वासा जी ने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, देखो तो सही, ये कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई है और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, इसने मुझे निमंत्रण भी दिया, फिर भी मुझे बिना खिलाए स्वयं खाकर इसने धर्म का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। ये कहते कहते उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी तथा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वो कृत्या आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा के ऊपर टूट पड़ी। राजा अम्बरीश एक पग भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने पहले से उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। उसने तत्काल कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर डाला और दुर्वासा की तरफ चल पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देखकर दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से वहाँ एकाएक भाग खड़े हुए। कहीं भी उनकी किसी ने रक्षा नहीं की। तब वे अत्यधिक भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयं भू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब वे भगवान के चक्र से संतप्त होकर कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने भी ये कहकर असमर्थता व्यक्त की कि हम भगवान की माया को नहीं जान सकते। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान परम धाम वैकुंठ में गए। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभो मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया है। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। इस प्रकार अम्बरीश की स्तुति से सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी की जलन भी शांत हो गई।
1: चिंतन आपने सुना, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 MHz पर और 7:10 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, उनके प्रसारण समय के साथ कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत।

अब से कुछ ही देर बाद 7:15 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला, 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज के लिए आपको आकाशवाणी केंद्र दिल्ली लेकर चलेंगे। पर सुनिएगा लोक संगीत, फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइए 8:45 पर। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा कुदरत के रंग कार्यक्रम। दस बजे से 11 बजे के मध्य आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पुनः याद दिला दें, 10 बजे से 11 बजे के मध्य आज का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जो रहेगा लाइव फोन इन।

11:05 पर सुनिएगा पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। पहाड़ी संगीत का लुत्फ उठाइए 11:30 पर। दिन में 12:10 पर फिल्म संगीत और महिला सम्मेलन कार्यक्रम लेकर आएंगे दिन में 12:20 पर। 1:10 का समय म्यूजिक मस्ती का रहेगा। सब रंग ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 2:00। लोक संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम शिखरों के स्वर का प्रसारण समय रहेगा 2:30। तीन बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। 4:00 फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक बोलियों के कार्यक्रमों के तहत सबसे पहले चंबियाली कार्यक्रम पेश होगा। समय रहेगा 4:20। 4:50 पर सुनिएगा मंडियाली कार्यक्रम। पंगवाली कार्यक्रम का समय 5:20 रहेगा। 6:05 पर सुनिएगा कांगड़ी कार्यक्रम। और आखिर में 6:35 का समय महासवी कार्यक्रम का रहेगा। सायं 7:10 पर किसानों और बागवानों का कार्यक्रम कृषि जगत पेश किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार सुनना न भूलें 7:45 पर। रात्रि 8:00 सुनिएगा भूले बिसरे गीत। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइए 8:30 से। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा एक फिल्म से कार्यक्रम।

0: रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच ईमेल पर केंद्रित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रहेगा। दिल की आवाज भी सुन। रात्रि 10 बजे सुनिएगा गजलें। और आखिर में 10:30 से 11 बजे के मध्य सुनिएगा सदाबहार नगमे। तो ये रहेंगे दोस्तों वो कार्यक्रम जिन्हें आप आज सुन पाएंगे दिन भर आकाशवाणी एफएम शिमला, फ्रीक्वेंसी है 103.7 मेगाहर्ट्ज़। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए कुछ पलों का इंतजार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे ना मीठी।
1: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

0: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला। शिमला
1: कहाँ ये यादियाँ थी तेरे मिलने से पहले।
0: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है, आकाशवाणी

0: FM शिमला शुभवाणी लाभवाणी ये है जन जन की वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी FM शिमला से अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। शिमला की कुछ ठंडी कुछ गर्म फिजाओं हरी भरी वादियों और पहाड़ों की गोद से सभी सुनने वाले श्रोता मित्रों को वीरेंद्र शर्मा का सस्नेह नमस्कार। नई ऊर्जा नए उत्साह और नई उम्मीदों के साथ लेकर हाजिर हूं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग शिमला। सभी का स्वागत। उम्मीदों का सूरज लेकर आई है नई सुबह। जी हां, उम्मीदों का सूरज लेकर आई है नई सुबह। खुशियों की सौगात लेकर आई है नई सुबह। मुस्कुराइए गुनगुनाइए और दिल खोलकर लीजिए मजा इस कार्यक्रम का, क्योंकि जिंदगी का खूबसूरत पल वही है जिसको हम पूरे मन के साथ मस्त होकर जीते हैं। तो तैयार हो जाइए संगीत मस्ती जानकारी प्रेरणा और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत खूबसूरत तरीके से करने के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला।

आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। बरखा की बूंदों ने मौसम का मिजाज बदल दिया, तपती जमीन को राहत का एहसास दिला दिया, पर सेहत का भी रखिए जरा खास ध्यान, तभी मौसम का आनंद बनेगा सबके लिए वरदान। गर्मी के बाद होने वाली बारिश में तापमान और नमी दोनों बदल जाते हैं, ऐसे में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहने, साफ और उबला हुआ या फिल्टर्ड किया हुआ पानी ही पिए, बाहर से कटे फटे खाद्य पदार्थों से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मौसम की हर अदा का स्वागत मुस्कुराकर जरूर कीजिएगा, परंतु अपनी सेहत का ख्याल भी पूरे ध्यान से रखना पड़ेगा आपको।

0: 103.7 MHz पर, और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला। कार्यक्रम जारी रहेगा एक अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से जारी है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला, और आज के इतिहास का जिक्र कार्यक्रम में अब कर लेते हैं। 1420 में आज के दिन जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में आज के दिन फांसी दी गई थी। 1993 में किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 2002 में से 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया था। 2003 में डेनियल अखमितोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। पांच में आज के दिन ईरान 2009 के अंत में 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमत हुआ था। 2006 में नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता आज के दिन किया था। आज जन्मे व्यक्तियों का भी जिक्र कर लेते जिनका जन्म आज हुआ था। 1994 में दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाज है, उनका जन्म हुआ था। 1944 में बान की मून, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बने थे, उनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। हिंदी सिने जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 1923 में आज के दिन हुआ था।

0: आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आपको बता दें, इंटरनेशनल समर फेस्टिवल शिमला का समापन कल रात खूबसूरत सांस्कृतिक संध्या के साथ ही हो गया। इस समापन संध्या में जहां स्थानीय कलाकारों ने भी समा बांधा, वहीं आमंत्रित कलाकारों ने भी दर्शकों को खूब झूमने पर मजबूर कर दिया। रिज मैदान शिमला संध्याकालीन से ही दर्शकों से खचाखच भर चुका था। लोग नाटियों पर देर शाम तक झूमते नजर आए। मंच पर प्रस्तुति दे रहे कलाकारों की हौसला अफजाई में तालियां और उत्साह के गूंज से वातावरण जीवंत हो उठा। जिन्होंने तो प्रत्यक्ष इसका लुत्फ उठाया, उनको तो जरूर सुकून मिला होगा द समर फेस्टिवल शिमला के इस खूबसूरत आयोजन से। अनेकों ने इस फेस्टिवल का लुत्फ सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाया। यही खेल, मेले, त्यौहार संपूर्ण हिमाचल को मुकम्मल करते हैं। यही यहाँ की जीवंतता है और लोगों के आकर्षण, आपसी भाईचारे और परस्पर सौहार्द प्रेम का अनूठा संगम भी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण, चल रहा है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनाएंगे, एक अंतराल पहले ले लेते हैं।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और यहां पर खेल जगत का रुख भी कर लेते हैं कार्यक्रम। पहले तो बताएं कि दोस्तों विश्व कप फीफा 2026 शुरू हो चुका है। संक्षेप में उसका जिक्र करें, फीफा विश्व का 2026 फुटबॉल का 23वां विश्व कप है और ये अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप माना जा रहा है। इसमें आयोजक देशों की बात करें तो इनमें शामिल है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे ये तीन देश। भाग लेने वाली टीमों की संख्या 48 है और पहली बार 32 से बढ़ाकर 48 टीमें की गई है फीफा विश्व कप 2026 में। प्रमुख जो टीमें इसमें शामिल रहेंगी उनका भी अगर जिक्र करें, अर्जेंटीना जो कि वर्तमान में चैंपियन है, इसके अलावा ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और पुर्तगाल है जिन पर सबकी नजरें रहने वाली है। बताएं आपको, फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन है जिसके अरबों दर्शक रहते हैं। ये केवल फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं बल्कि विभिन्न देशों की संस्कृति, खेल भावना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव भी है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी है। 2014 वर्ल्ड कप में क्रोएशिया को 3-1 से हराने के बाद ये पहली बार है जब मैक्सिको ने वर्ल्ड कप का कोई मैच 2 गोल के अंतर से जीता हो। इधर 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक तरफा क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने ताइवान की चेन सू यू को सीधे गेमों में 21-6, 21-9 से मात दी। ये मुकाबला मात्र 27 मिनट तक चला जिसमें पीवी सिंधु का पूरा दबदबा रहा। ये इस सीजन में 8 BWF वर्ल्ड टूर इवेंट में सिंधु का सिर्फ 2रा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला टॉप सीड अकाने यगामुची से।

होगा। जापान की यागाकुची के खिलाफ सिंधु का हेड टू हेड रिकॉर्ड 15-13 का है। दूसरी ओर भारतीय बैडमिंटन की उभरती खिलाड़ी तन्वी शर्मा का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया। उन्हें यामागुची से 14-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट के खेल दीवानों के लिए भी आपको बता दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी शनिवार को खेला जाएगा और ये खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में। दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा।

0: बने रहें आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का, आइए सुने।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा कल शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।

0: और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स, बिलासपुर मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसके विनियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके तहत किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 15 जून को राज्यव्यापी मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय इस मॉक एक्सरसाइज में भूकंप, क्लाउड ब्रस्ट और वनाग्नि जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वन डे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। भारतीय टीम में रोहित शर्मा को छोड़कर सभी युवा चेहरे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से कल रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। कुल्लू और लाहौल स्पीति और शिमला सहित कई स्थानों पर हल्के बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए अब हम आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली। प्रतीक्षा करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत

0: में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित विजयन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के

0: अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than

0: during the next 2 days. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shakun Chopra.
1: Thank you, Sarabjit. Almost all newspapers today open with condemnation of US attack on ship with Indian crew. The Asian Age writes, India flays Hormuz ship attacks, US blames Iran. Hailing diversification of its energy basket, EAM calls out West's double standards on oil purchases, writes the Statesman. In the backdrop of US and Iran signing peace deal, war premium to peace dividend, stock surge, crude cools, and the rupee rebounds on hopes of easing tensions, reports the Financial Express. Termed as student-friendly changes, extra 15 minutes, more rough work space for students in NEET retest, informs the Hindustan Times. Rain, strong winds deliver city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman, on its editorial page under the caption Demanding Proof, writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it open to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 8:30 हुए हैं लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस
3: नमस्कार एफएम न्यूज हेडलाइंस के इस अंक के साथ मैं कौशल्या शर्मा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने 2 दिवसीय शिमला प्रवास के दूसरे दिन 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री आज सुबह चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे केंद्र सरकार ने मनाली लेह सामरिक मार्ग को पूरे साल बहाल करने के लिए 3 टनल प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है इन सुरंगों के निर्माण पर 15,550 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है इन सुरंगों के निर्माण से लद्दाख को पूरे वर्ष सड़क संपर्क बहाल रहेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की आवाजाही तथा रसद आपूर्ति को भी मजबूती मिलेगी प्रदेश में मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले लोक निर्माण विभाग ने संभावित भारी बारिश भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं विभाग ने सभी फील्ड अधिकारियों को आपात स्थिति में बिना देरी से राहत और बहाली कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसके विनियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नए आदेश जारी किए हैं इसके तहत किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 15 जून को राज्य व्यापी मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी राज्य स्तरीय इस मॉक एक्सरसाइज में भूकंप क्लाउड ब्रस्ट और वन्य अग्नि जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वन डे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा धर्मशाला स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान टीमें पहली बार आमने सामने होंगी भारतीय टीम में रोहित शर्मा को छोड़कर सभी युवा चेहरे हैं 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के

0: दर्शन के लिए किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। जिला प्रशासन ने कल बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच के बाद ही एक दिन में 375 श्रद्धालु जा सकेंगे और यात्री पवारी में अपना पंजीकरण करवाएंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 17 जून को होने वाली पंजाबी और उर्दू विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। और अब मौसम। राज्य में बढ़ती गर्मी और तपते मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हुई बारिश से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात की संभावना है। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त है लोक संगीत का।

लोक संगीत आप आकाशवाणी एफएम शिमला से सुन रहे हैं। संजीता की आवाज में भी आपने ये लोक गीत सुना। अगला लोक गीत सुनते हैं गोपाल कृष्ण भारद्वाज की आवाज।

0: प्रभा ठाकुर के गाए इसी खूबसूरत लोकगीत के साथ लोक संगीत में आज के लिए बस इतना ही। अभी आप बने रहें आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण आकाशवाणी एफएम शिमला का। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम सुनेंगे कुछ पलों के इंतजार के बाद।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी, लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत आइए सुने। मुबारका फिल्म में मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ को आइए सुनते हैं।

एफएम शिमला से आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्लोरी फिल्म का यह है अगला गाना। रोमियो और विवेक हरिहरन की आवाजें हैं।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:15 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे प्राइमरी चैनल से आज कौन कौन से कार्यक्रम किस समय आप सुन पाएंगे मुख्य आकर्षणों के बारे में। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा सुरबेला कार्यक्रम। 10 का समय रहेगा रिमझिम का। 11:05 पर लोक संगीत का लुत्फ उठाइएगा। फिल्म संगीत के सुरमई तरंगों का लुत्फ उठाइए 11:30 से। 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम लेकर आएंगे हम सैनिकों के लिए। ये खास कार्यक्रम 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सुनिएगा फिल्मी नगमे। 2 सुनिएगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम। लोक संगीत पर केंद्रित हिमगुंजन कार्यक्रम प्रसारित होगा 2:30 पर। 4:20 के कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:20 से। साइंस 7:10 पर आज आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। रात्रि 8 धारावी गीत कार्यक्रम पेश होगा। फिल्म संगीत सुनिएगा 8:15 पर और सुगम संगीत का वक्त रहेगा रात्रि 8:30। प्रादेशिक न्यूज रील कार्यक्रम हिमदर्शन का समय रहेगा रात्रि 9:15। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती का समय रहेगा 9:30। और रात में 10 से 11 के मध्य आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हमारे प्राइमरी चैनल के आज के मुख्य आकर्षण यही रहेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज अपने शिमला प्रवास के दूसरे दिन मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को मजबूत कर रही है केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना। ऊना जिले के 81 स्वास्थ्य संस्थानों को मिला सम्मान। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव सम्पन्न। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला आज। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने 2 दिवसीय शिमला प्रवास के दूसरे दिन 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज सुबह चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। बाद में जेपी नड्डा होटल हॉलीडे होम शिमला में मीडिया से रूबरू होंगे और केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। वे दोपहर में शिमला के जाखू मंदिर व तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ग्राम पंचायत शोगी के परमार वन में वृक्षारोपण अभियान में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा वे गोरखन वन टनल नंबर 1 से आनंदपुर साहिर में प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 150

0: पचानवे मिनट कर दी है। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। योजना के तहत इस वर्ष ऊना जिले के विभिन्न वर्गों के 81 चिकित्सा संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें नगद इनाम राशि भी शामिल है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: इस वर्ष ऊना जिला ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला के 81 सरकारी चिकित्सा संस्थानों को प्रदेश स्तरीय कायाकल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि ये पुरस्कार इन संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता तथा मरीजों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोहा ने अपने वर्ग में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि सिविल अस्पताल बंगाणा राज्य में तीसरे स्थान पर रहा। ग्राम स्तरीय संस्थानों के वर्ग में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनकौर ने प्रदेश में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को अपने वर्ग में दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल संपन्न हो गया। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतिम संध्या पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय के नाम रही, जिसमें दोनों कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुति से रिज मैदान पर मौजूदा हजारों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शिमला ग्रीष्मोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताएं स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में ग्रीष्मोत्सव में आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रसारित की गई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला के भुंतर मणिकरण मार्ग पर सरसाड़ी के समीप कल एक निजी वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर अवस्था में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पर्यटक पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे और मणिकरण से वापस आ रहे थे। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज HPCA स्टेडियम क्रिकेट धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले से एक दिन पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास कर पिच, मौसम और आउटफील्ड की परिस्थितियों का आकलन किया। धर्मशाला में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। आज सुबह भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मैच के दौरान मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। धर्मशाला में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल हल्की बर्फबारी का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने आगामी 24 घंटों तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है।
2: 13 और 14 जून संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बारिश का दौर थंडस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। फिर 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान है स्पेशली पूरे प्रदेश में ही, जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत

0: बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चराई नीति हरियाली भी खुशहाली की सोच को साकार करती है। ये नीति हमारे चारागाहों की रक्षा करती है, पशुपालक परंपराओं का सम्मान करती है और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। और अभी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी का शीर्षक है, धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला आज 1:30 बजे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज क्रिकेट का महासंग्राम, युवा टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान की चुनौती। हिमाचल दस्तक लिखता है, वनडे सीरीज धर्मशाला में आज भिड़ेंगे भारत अफगानिस्तान। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के मेधावियों को सीएम आज करेंगे सम्मानित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, फसल बीमा की 10% हिस्सेदारी से हिमाचल का इनकार। मौसम पर दैनिक भास्कर का कहना है, 24 घंटे में सामान्य से 598% ज्यादा बारिश, आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी। दिव्य हिमाचल लिखता है, सिरमौर शिमला में बाढ़ का खतरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज अपने शिमला प्रवास के दूसरे दिन मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को मजबूत कर रही है केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना। ऊना जिले के 81 स्वास्थ्य संस्थानों को मिला सम्मान। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव सम्पन्न। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला आज। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे
2: मस्त, चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। वक्त हो चला है कुदरत के रंग कार्यक्रम का, और दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम चलेंगे घूमने और दर्शन करवाएंगे आपके सोलन स्थित जटोली शिव मंदिर के। गीत संगीत भी चलता रहेगा, आगाज गीत संगीत के साथ कर लेते हैं

कुदरत किरण कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और इस कार्यक्रम में हमने जिक्र किया कि आज हम लेकर आपको चलेंगे सोलन स्थित जटोली मंदिर के दर्शन की ओर। जटोली शिव मंदिर प्रदेश के जिले सोलन में स्थित भगवान शिव का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। ये सोलन शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ मार्ग पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। जटोली शब्द भगवान शिव की जटा से जुड़ा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान

जमीन पर कुछ समय विश्राम और तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम जटोली पड़ा। मंदिर के इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के मंदिर का जो निर्माण है उसका श्रेय श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी महाराज को दिया जाता है। वे लगभग 1950 के दशक में इस क्षेत्र में आए और बाद में उनके मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण कार्य 1970 के दशक में आरंभ हुआ। मंदिर को पूर्ण रूप लेने में लगभग 40 वर्ष का समय लगा।

मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली से प्रेरित हैं, बताया जाता है। मुख्य शिखर लगभग 122 फीट ऊंचा है इसका। मंदिर में सुंदर नक्काशी, अनेक शिखर और आकर्षक श्वेत संरचना देखने को मिलती है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से सोलन और आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का मनोहारी दृश्य भी दिखाई देता है। धार्मिक महत्व की बात करें तो मंदिर के भीतर शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। परिसर में एक गुफा भी है, जहां स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी के तप करने की मान्यता रहती है। मंदिर में स्थित जल कुंड का जल बेहद पवित्र माना जाता है।

आकाशवाणी एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जटोली मंदिर की। दोस्तों, मंदिर की ऊंचाई और भव्यता के कारण इसे एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों के तौर पर भी गिना जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, आध्यात्मिक और ध्यान के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। अब अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं शिव मंदिर जटोली की, तो बताएं आपको कि सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। सोलन से टैक्सी, निजी वाहन और स्थानीय बसों द्वारा भी आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग अगर आप चुनना चाहते हैं इसके लिए, तो निकटतम रेलवे स्टेशन सोलन रहेगा, और वायु मार्ग के लिए तो हवाई अड्डा चंडीगढ़ है और लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। चलते चलते एक और खूबसूरत नगमा कार्यक्रम में आपकी नज़र करते हैं। फिल्म का नाम है धनवान।

0: तो इसी के साथ कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का, आइए सुने।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने 2 दिवसीय शिमला प्रवास के दूसरे दिन 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज सुबह चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। बाद में जेपी नड्डा होटल हॉलिडे होम शिमला में मीडिया से रूबरू होंगे और केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। वे दोपहर में शिमला के जाखू मंदिर व तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ग्राम पंचायत शोघी के परमार वन में वृक्षारोपण अभियान में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा वे गोरखन वन टनल नंबर 1 से आनंदपुर में प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने

और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज HBCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले से एक दिन पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास कर पिच, मौसम और आउटफील्ड की परिस्थितियों का आकलन किया। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पार

0: देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 आज और कल आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी, टीजीटी संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। कल सुबह 6:57 पर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 10 बजे हैं, ये वक्त है लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आज के इस विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए हाजिर हूं मैं वीरेंद्र शर्मा। सभी को सस्नेह नमस्कार। दोस्तों, रेडियो की दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दूरियां अल्फाजों तक सिमट कर रह जाती है, आवाजों तक सिमट जाती है। आपके विचार, आपकी बातें और आपके अनुभव सीधे हम तक पहुंचते हैं और यही बनाता है इस कार्यक्रम को खास। बातों से बनते हैं रिश्ते, आवाजों से प्यार होता है। दिल से दिल जब जुड़ जाए तभी तो संवाद होता है। उठाइए फोन और मिलाइए हमारा नंबर, कार्यक्रम का हिस्सा भी बन जाइए साथ ही साथ। अपनी राय, सुझाव, सवाल या दिल की बात हमारे साथ कर सकते हैं साझा। 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सुनिए अपनी पसंद का कोई सा फिल्मी नगमा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल यहां बताना चाहेगी ये कि ये कार्यक्रम है फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम। आज कुछ फिल्में कार्यक्रम में चुनकर आपके लिए लाए हैं, उन्हीं फिल्मों में से आप अपनी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी पसंद का वो गाना जो इन फिल्मों में से यकीनी तौर पर आपका भी अवश्य ही फेवरेट होगा। नोट कर दें पहले तो हमारे नंबर, उसके बाद फिल्मों के नाम भी आपको बताऊंगा। हमारे टेलीफोन नंबर है 2808034 और दूसरा नंबर रहेगा 2808152। एसटीडी नंबर शिमला का आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन से फोन करेंगे तो आपको एसटीडी नंबर लगाना पड़ेगा इन नंबरों से पहले, जो कि है 0177। फिर से नंबर रिपीट किए देता हूं, 2808034 और 2808152। अब उन फिल्मों के नाम जो 1 घंटे तक चलने वाले आपकी फरमाइश लाइव फोन इन कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। आज फिल्में हैं कर्ज, याराना, सिंदूर, कलाकार, सागर, आशा, वारिस, यादों की बारात, अजनबी, प्रेम पर्वत, आंधी और धर्मात्मा। आपके फोन कॉल्स की इंतजारी कर रहे हैं हम, तब तक आपकी इंतजारी खत्म किए देते हैं और इस कार्यक्रम का यह है खूबसूरत पहला नगमा

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ आप बने हुए हैं और चल रहा है लाइव फोन इन कार्यक्रम। आपकी फरमाइश हमारे साथ, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, अब सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं, परिचय दें पूरा।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: परमार साहब, आपका हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के स्टूडियोज में।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: क्या करते हैं आप?
1: सर खेती किसानी करते हैं।
0: और मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है भारत के, जानते हैं आप ना?
1: जी जी सर, मध्य प्रदेश पूरे भारत का दिल है सर।
0: हाँ, और एक एक जो जो आप कह रहे हैं कि खेती किसानी का काम आप मध्य प्रदेश के किसी हीरापुर गांव बताया, उस वहां पर करते
1: जी,
0: हैं
1: सर, हीरापुर गांव है, जिला सीहोर है मध्य प्रदेश से।
0: क्या क्या उगाते हैं खेतों में आप?
1: सर हम अभी तो जैसे बरसात चालू होगी सर, तो मक्का और सोयाबीन और धान की बुआई करेंगे सर।
0: अपने उपयोग के लिए ही आप इस्तेमाल करते हैं या फिर बेचते भी हैं अपने उत्पाद को?
1: जी सर, हम अपने उपयोग में तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब बेचने के लिए बोते हैं सर।
0: अच्छा, तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती
1: है। हम घर रख नहीं सकते, उपयोग में नहीं ला सकते सर, इसलिए बेचना तो पड़ता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी आर्थिकी को भी वो समृद्ध बनाती है ये फसलें, और अपने लिए अपनी जमीन का उगाया हुआ भोजन जब हमें मिलता है तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है उसकी भी उपलब्धता या महत्वता बहुत बढ़ जाती है ना।
1: जी हाँ सर, और अभी भारत जैविक खेती को और अग्रसर हो रहा है सर, तो मैं अब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर ज्यादा नहीं हो सके, आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो उसमें से 1.5 एकड़ जमीन आप जैविक खेती में इस्तेमाल करें।
0: क्या बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी एफएम शिमला के कार्यक्रमों को तो सुनते रहते होंगे?
1: जी सर बिल्कुल सुनते रहते हैं, और हमें ये हेलो फरमाइश वाला कार्यक्रम तो सर बेहद पसंद है सर।
0: और फोन भी करते रहते हैं लगातार अंतराल
1: सर? लगातार तो नहीं सर, कुछ अंतराल के बाद करते हैं।
0: आज कितने अंतराल के बाद आपकी बात हो रही
1: सर,
0: है?
1: करीबन हो गया होंगे, 1 महीना करीब हो गया होगा अंतराल आपके यहाँ कार्यक्रम।
0: अच्छा, और इस अंतराल को मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और बड़ा करें। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद यदि हमारे दोस्त कॉल करेंगे तो नए दोस्तों को भी कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, है ना?
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने, नए दोस्त प्रयास करते रहते हैं, उनका कॉल नहीं मिलता है, इसीलिए हम अंतराल दे रहे हैं सर।
0: तो सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप भी निभाएं, हम तो निभा रहे ही हैं, ताकि नए दोस्त भी कार्यक्रम में शामिल हो सके। आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है सिंदूर सर, इसमें से जो गीत आपको पसंद हो वो सुना दीजिएगा।
0: मुझे तो इस फिल्म के सभी गाने पसंद है
1: जी सर, तो जो आपकी इच्छा हो उसमें से वो सुना देना।
0: चलिए चलिए, आपको हम इस फिल्म का गीत सुनवाते हैं।
1: वो सर हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के सभी दोस्तों को डेलीकेट रहेगा सर।
0: जी जी जी जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना सिंदूर फिल्म का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं। आनंद बख्शी की है शब्द रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। गीत के बोल पतझड़ सावन बसंत बहार।

0: एक बार पुनः स्वागत करते हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम। आपकी फरमाइश चल रहा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले कॉलर कार्यक्रम के। चलते हैं सीधा उन्हीं के पास, जानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, परिचय दें अपना।
1: जी नमस्कार सर, मैं अनुरूप सिंह बात कर रहा हूँ कैथो शिमला से।
0: अच्छा।
1: और आपका नियमित होता हूँ, पहली बात तो ये कहूँगा सर।
0: अच्छा।
1: और मुश्किल से कॉल लगता है आपका। जी ये
0: जी,
1: तो चलिए स्वाभाविक सा है, आपके श्रोता है तो सभी प्रयास करते हैं सर।
0: जी बिल्कुल, और आप खुश भी है कॉल लगी है, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट हमें आपकी हंसी के माध्यम से महसूस हो रही है ना। क्या करते हैं अनूप आप?
1: जी सर, जैसे आपने कहा कि हम खुश रहते हैं हमेशा, हंसी हमारे साथ हमेशा रहती है, क्योंकि हम बचपन के बीच जीते हैं हमेशा। जिस बचपन को हमने सालों पहले छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो हमारे साथ रहता है। तो मैं एक अध्यापक हूँ सर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्कर बाजार है शिमला में, तो वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ सर आज।
0: अरे वाह, अरे वाह, देखिए आप बच्चों के बीच रहते हैं और आपने सही फरमाया कि आप बचपन जीते हैं, खुद भी पहले जी चुके हैं, अब बच्चों के माध्यम से जीते हैं उसी परिवेश को। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके हिमाचल में, कुछ मूल चूल परिवर्तन भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना है आपका?
1: जी हाँ सर, बिल्कुल बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। और वैसे तो खैर मैं ये कहूँगा कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो सब कुछ अच्छे के लिए, आगामी मतलब समय में अच्छा हो, इसके लिए ही प्रयास रहता है। और इसी तरह पर जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश ने, हिमाचल सरकार ने जो है वो कुछ हमारे जो विद्यालय हैं चुनिंदा, उनको CBSE जो बोर्ड है उसमें परिवर्तित किया है।
0: क्या कारण लगता है आपको, क्यों ऐसा किया होगा?
1: जी वैसे तो खैर ये इसमें कुछ कहना थोड़ा ज़्यादा होगा, चीज़ों की होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद यही मानकर ये सब किया गया है कि जैसे CBSE का एक अपना एक मतलब पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना आधार है, और सभी जो हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं बेसिकली उसमें जो सिलेबस होता है बेसिकली NCERT बेस्ड होता है, तो उसको मतलब हमारे प्रदेश में भी एक जैसे कहते हैं ना राष्ट्रीय स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर बच्चे चल सकें और सभी परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से अपने मतलब अपने को साबित कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एस्पिरेंट्स ऐसे तैयार कर पाए हिमाचल भी जो नेशनल लेवल पे खुद को कंपटीशन में आगे लाकर खड़ा कर सके, है ना। और शुक्रिया कॉल करने के लिए। कौन सा गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे?
1: जी सर, मैं वारिस मूवी का एक गीत है सर, तेरे प्यार की उम्र हो, ये वाला जो।
0: जी जी जी, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बहुत खूबसूरत नगमा है। आपने कॉल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर जो शिक्षा,
1: छोटी सी रिक्वेस्ट होगा।
0: जी बोलिए बोलिए।
1: ये भी शायद आप, जैसे आप दो नंबर देते हैं अक्सर कॉलिंग के लिए, तो अगर आप प्रयास करें कि दो, कम से कम दो मतलब आप अगर उनको श्रोताओं को एक साथ सुना सकें, चाहे थोड़ी बात हो,
0: चले
1: गाना आप एक ही सुनाएं, लेकिन क्योंकि सभी प्रयास में होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा मतलब।
0: चलिए चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपका पॉइंट नोट कर दिया गया है और कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इन बातों पर भी गौर फरमाया जाए। आपको अब सुनवाएंगे वारिस फिल्म का गीत, लेकिन उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए

0: रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला से कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इन श्रोता की पसंद का ये गाना।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी FM शिमला से आप सुन रहे हैं और आज कार्यक्रम में शामिल फिल्मों के नाम फिर से रिपीट किए देता हूं। कर्ज, याराना, सिंदूर, कलाकार, सागर, आशा, वारिस, यादों की बारात, अजनबी, प्रेम पर्वत, आंधी और धर्मात्मा। हमारे टेलीफोन नंबर्स रहेंगे 2808034 और दूसरा नंबर 2808152। अगले कॉलर फोन लाइन पर है, उनके पास अब चलते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, परिचय दें।
4: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
3: राकेश जी, आपका हम स्वागत करते हैं, कहिए राकेश
4: जी। बस बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा दूँ कॉल, क्योंकि मुझे पता है आपके साथ जो है काफी कॉलर जुड़े होंगे कहीं कहीं से, हर राज्य से।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कि हिमाचल से भी एक कॉल आ जाए तो अच्छी बात होती।
3: देखिए, आपकी कॉल आई है और बात हो रही है। राकेश, कोटखाई से आप बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप?
4: हम तो बागवानी करते हैं सेब की।
3: कोटखाई का बड़ा नाम है बागवानी के क्षेत्र में, प्रदेश भर में, है ना?
4: जी जी जी, प्रदेश भर में जो है कोटखाई का नाम है, लेकिन हिमाचल में अगर बुक में देखा जाए तो सबसे बुक में भी क्वेश्चन कोटखाई का आता है, क्योंकि कोटखाई है बागवानी के नाम से जाना जाता है।
3: क्या कारण मानते हैं आपको आप इसका, कि क्यों इतना आगे कोटखाई निकला और लोग बड़े मेहनती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है बागवानी में, है ना?
4: जी, तो मैं इसमें मैं एक एक बात जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोटखाई में सेब होते हैं। हिमाचल में ऐसे ऐसे क्षेत्र है, जैसे कि अगर आप ठेक साइड देखो, ठेक में भी काफी हाइट वाला इलाका मान जाता है, जैसे मतियाना है, ये माहौरी है, शिलारू है, ये चीज जाता है सेब के लिए, क्योंकि कोटखाई से ज्यादा हाइट इलाका तो वही है।
3: जी,
4: तो इसमें कारण ये है कि जो इस साइड के लोग है, ये सबको बाहर जाने की रुचि रखते, जैसे कि जॉब के लिए अप्लाई करते, अगर जॉब ना होती तो फिर सरकार से मांग करती है, हड़ताल करते। और कोटखाई के क्षेत्र से अगर जॉब मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, तो हम अपनी खेती बाड़ी और बागवानी संभाल लेते, तो इससे जो है कोटखाई आगे निकल रहा है पूरे, मतलब प्रदेश।

0: संदेशात्मक ये परिप्रेक्ष्य रहा। और स्वावलंबन की भावना बहुत बड़ी चीज़ है, और खेती बाड़ी करना, बागवानी करना, ये तो खैर अपने आप में अलग अनुभव है। और
1: क्योंकि जब कोट खाई किसे पूरे भारत में जाते तो उसमें काफी लाभ हो जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर कोट खाई का अगर अच्छा बगीचा होता है सेब का, कम हम 1500, कई बंदे से 1500 3000 पीटिया निकाल देते तो वो करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। लेकिन
0: जी
1: जो
0: हाँ,
1: उस साइड के जो लोग है, जैसे मित्याना साइड लोग है, वो सिर्फ जॉब के लिए या
0: चलिए
1: इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, तो
0: चलिए, बहुत
1: इस तरह
0: शुक्रिया,
1: अगर
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश कोटखाई के अलावा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सेब की बागवानी में बहुत आगे निकल
1: बागवानी
0: चुके हैं।
1: होती है।
0: आज
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम में
1: बिल्कुल।
0: कॉल की है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज मुझे सागर मूवी का गाना सुनना है।
0: अच्छा, चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको सागर मूवी का गीत हम सुनवाते हैं। इस बीच एक और कॉलर भी है, उन्हें भी सीधा लाइन पे ले लेते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: सर,
0: नमस्कार जी, अपना परिचय दें आप भी।
2: मैं सोनी शर्मा बात कर रही हूँ, कलिंग शिमला से।
0: फिर से बोले अपना नाम, थोड़ा आवाज़ कट कर आई।
2: सर, मैं सोनिया शर्मा बात कर रही हूँ, शिमला कलिंग से। सर,
0: अच्छा सोनिया, कहिए कैसी हैं आप और क्या करती हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर, आई एम डूइंग प्रेपरेशन फॉर माई एग्जाम्स। और सर, मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, और इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी कर रही है ना?
2: जी जी सर।
0: अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। और घर के कामकाज को संभालते संभालते पढ़ाई के साथ जुड़े रहना और एग्ज़ाम के लिए जाना, ये अपने आप में प्रेरणादायी है।
2: जी सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली ना। मैं सर, मैंने आपको फोन दिया, मतलब कम से कम आई थिंक सर आई हैव ट्राइड इट 10 टाइम्स, और सर
0: ओके।
2: अभी जाके मेरी फोन, मैंने फोन कॉल पिक हुई है।
0: हाँ, देखिए हमारे दोस्त बहुत सारे होते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ जब आपसे बात हो रही है तो
2: सर,
0: दोस्त।
2: मैं तो 1 साल बाद कॉल कर रही हूँ शायद आज। पर मैं
0: आपका
2: सर रेगुलर लिसनर हूँ, मैं सुनती हूँ सर। हम चाहते हैं ना कि दूसरे जो ऑडियंस होते हैं वो भी, उनको भी चांस मिले सर बात करने का।
0: देखिए, आपने 1 साल के अंतराल के बाद कॉल किया, संदेश आपने इनडायरेक्टली तमाम दोस्तों को दे दिया है कि इतना अगर आप अंतराल रखेंगे तो नए नए दोस्त यकीनी तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ, है ना?
2: जी सर।
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी अब सुनिए इसी फिल्म का गाना, सागर फिल्म का बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये गाना आपके लिए।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी FM शिमला से चल रहा है आपकी फरमाइश लाइव फोन इन कार्यक्रम। अगले कॉलर के पास अब चलते हैं कार्यक्रम में, बात करते हैं उन्हीं से। हेलो हेलो
6: हेलो सर,
5: नमस्कार, अपना नाम बोले।
6: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
5: कश्मीर के हमारे मित्र का स्वागत है आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कहिए लतीफ मोहम्मद, क्या करते हैं आप?
6: बस मैं तो अपना घर का ये खेती बाड़ी करता हूँ और कुछ बागवानी करता हूँ।
5: अच्छा,
6: यहाँ पे केसर वगैरह है और बादाम है, गिरी है, गिरी निकालते हैं ना सर, अखरोट, वो फिर बाहर मंडी में बेचते हैं।
5: अच्छा,
6: हाँ सर।
5: तो देखिए, बादाम, गिरी, अखरोट की आप ये बेचते हैं, खुद तो खूब खाते होंगे, है ना?
6: नहीं, यहाँ तो कम खाते हैं, अपने घर के जो निकलते ना मेवा सर, वो तो कम खाते हैं हम।
5: अच्छा,
6: जो बाहर का मेवा होता वो तो ज्यादा खाते हैं, जैसा वो केला होगा, हाँ ये चीज खाते हैं ज्यादा बाहर।
5: एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीर से आप बात करें, आपने कहा कि बागवानी सेब की भी करते हैं वहां। हाँ। पर जो हम देखते हैं सिडलिंग्स का काम बड़ा होता है, यानी कि जो जो हमारे जो सेब का जो पौधा होता है उसका जो शुरुआती पॉलिन, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं सीडल्स, सीड्स कहते हैं, सीड्स उगाने का काम बड़ा बड़े बड़े पैमाने पर होता है, क्या क्या वजह है इसकी?
6: यहाँ पे ना लगभग अच्छा मेवा उगाते हैं क्योंकि बागवानी में ये पैदावार करते हैं।
5: अच्छा,
6: हाई ग्रेड सेब होते हैं एप्पल, उसमें तो ज्यादा पैदावार होते हैं यहाँ पे आजकल।
5: लतीफ मोहम्मद जी, आप कश्मीर से बोल रहे हैं, कौन सी भाषा वहाँ पर अपने डायलेक्ट में अगर बात करें बोली जाती है कश्मीरी?
6: अशतोन प्रोग्राम बोजान, इम सारी प्रोग्राम फोन इन फरमाइश, असल इम बोजान, ईमेल फरमाइश, फोन इन फरमाइश, मीडियम छु, FM 2 छु,

0: चिमसरी भोजन।
1: अब थोड़ा समझा भी दीजिए क्या कहा आपने और किस भाषा में।
0: मैंने बोला ये जो FM 2 है ना, FM प्रोग्राम और मीडियम सर्विस वो भी मैं सुनता हूँ।
1: अच्छा,
0: जो फोन फरमाइश है, ईमेल फरमाइश है, वो मैं सुनता हूँ यहाँ पे।
1: बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए लतीफ मोहम्मद साहब। गीत कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में, ये भी चलते चलते बता दें।
0: कलाकार फिल्म का।
1: अच्छा, कलाकार फिल्म का गीत आपको हम सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ और कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं और कोशिश है हमारी कि बहुत से दोस्तों को शामिल किया जाए अगले कॉलर के पास। अब चलते हैं, उन्हें भी जल्दी से शामिल किए देते हैं। नमस्कार, अपना परिचय दें आप भी।
2: मैं चिरिमिरी कुरासा काली जिला कुरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। मेरा फोन लगा था, कट गया सर। आपकी तरफ से कटा कि नेटवर्क से कटा, लेकिन सर कटना नहीं चाहिए सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
1: जी देखिए, हमारा तो बिल्कुल ध्यान है, 1 घंटे के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में इसी के लिए हम बैठे हैं। आपकी कॉल आई है, फिर से कॉल लगी है। देखिए बहुत सारे दोस्त लगातार कॉल कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो सकती है, बस आप समझ सकते हैं। आप बताइए क्या करते हैं मित्र आप।
2: मैं सर एसी सेल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेशन में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ। ड्यूटी पीरियड में ही कई बार कार्यक्रम में फोन करता हूँ। अभी 2-4 दिन से नहीं जा रहा था सर, तो पानी की समस्या था।
1: अच्छा
2: अभी आपका मैं कार्यक्रम से छोटा मोबाइल में सुन रहा, कश्मीर तो किसी श्रोताओं का फोन में आपका बातचीत चल रहा है जी, और बड़ा मोबाइल में आपसे बातचीत कर रहा हूँ सर, छोटा मोबाइल में सुन रहा हूँ।
1: चलिए,
2: और अभी
1: तरीके अपने तरीके से अपनाते हुए आप कार्यक्रम आकाशवाणी FM शिमला के सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। और आज तो खैर यही गाना आपको भी सुनना पड़ेगा जो हमारे पिछले दोस्त की रिक्वेस्ट थी और कलाकार फिल्म का गीत है। आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनते हैं ये गाना कलाकार फिल्म से।

0: अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अब उनके पास चलते हैं, जानते हैं कौन है। हेलो
1: शर्मा जी, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा सिसोदिया साहब, आपका स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी अच्छा लग रहा है
1: जी।
0: क्या करते हैं प्रेम?
1: मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं आपके। जब सर बताओ, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना।
0: अच्छा।
1: तो जैसे हमें बहुत सारे फायदे मिले हैं, सब में हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं। हाँ। जैसे कि हम कहीं पर भी जाए फिर भी कार्यक्रम सुन लेते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, झालावाड़ राजस्थान में हूँ, बट फिर भी मैं मोबाइल पर आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: देखिए आप है मध्य प्रदेश के, अभी राजस्थान में है, कार्यक्रम शिमला के सुन रहे हैं, है ना। यही टेक्नोलॉजी का बदलते युग के साथ खुद को एडजस्ट करने की कला है और प्रवृत्ति है, है ना।
1: जी बिल्कुल, इसे ना काफी नेटवर्क फिर से आकाशवाणी का बढ़ चुका है।
0: प्रेम, आपका नाम भी प्रेम है ना, प्रेम बांटते हैं।
1: जी बिल्कुल प्रेम बांटते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, बोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूं, अपनी पसंद के गाने भी सुनता हूं, नए नए दोस्त हमें मिलते हैं आकाशवाणी के जरिए।
0: पर गाने सुनाते भी है?
1: गाने भी सुनाते हैं, उनके बारे में बातचीत भी होती है, वो भी
0: नहीं,
1: सुनते हैं।
0: आप गीत खुद गाते भी है गाना?
1: जी सर, मैं गाने नहीं गाता, मैं एक भजन गायक हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, भजन भी गाना बहुत अच्छी बात है, सुनना तो उससे भी अच्छी बात है। बहरहाल कार्यक्रम में आप जुड़े, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: याराना फिल्म का तेरे जैसा यार कहा।
0: और याराना आकाशवाणी शिमला के साथ आप ऐसे ही बदस्तूर जारी रखें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, आपका शुक्रिया। एक और कॉलर को कोशिश है हमारी कि शामिल किया जाए कार्यक्रम में चलते चलते। हेलो।
2: हेलो जी,
0: जी कार्यक्रम आपकी फरमाइश है, आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ आप जुड़ चुके हैं।
2: आपके फरमाइश से भी इसमें रिमझिम लिखा लो, रिमझिम लिखा था भी। चलो ठीक, धन्यवाद भैया।
0: जी
2: गोदवा साजा, छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोलो भैया जी। नमस्ते, प्रणाम।
0: प्रणाम आपको भी। और राम स्वरूप गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से हमें हमसे बात कर रहे हैं ना?
2: हाँ भैया जी।
0: क्या करते हैं आप?
2: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ भैया, सवारी इकट्ठा कर तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ बस से।
0: अच्छा, तीर्थ पर कहाँ कहाँ पर, जो आज तक के पर्यटन के तौर पे देखें या तीर्थ के तौर पर देखें, सबसे अच्छा आपका फेवरेट तीर्थ कौन सा रहा है?
2: सबसे अच्छा भैया ऊपर ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है।
0: अच्छा, उत्तराखंड की तरफ।
2: हाँ, अभी आया हूँ भैया, 3 तारीख से आया मैं। पशुपतिनाथ मनोकामना भी था, हरिद्वार ऋषिकेश भी था।
0: अच्छा।
2: बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री अन्य भी था, वृंदावन था, अपना अयोध्या भी था, इलाहाबाद भी था, बनारस भी था।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत आनंददायक होता होगा ये जो टूर है आपका, है ना।
2: दर्शनीय प्राकृतिक देन भैया, ऊपर का तो बहुत बेहतरीन लगता है भैया दृष्टि तौर।
0: अच्छा अच्छा चलिए, शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। आप भी सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म याराना से।

0: समय हमारे पास बहुत कम बचता हुआ रह रहा है और अगले कॉलर के पास हम जाना चाहेंगे, जाने की कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्कार, मैं योगेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी योगेश, आपका स्वागत है, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं डीएलएड कर रहा हूँ आजकल शिमला से। वैसे ओरिजिनली मैं करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ।
0: अच्छा, तो मंडी से क्यों नहीं करी आपने डीएलएड?
1: क्योंकि शिमला नजदीक पड़ता है और यहाँ पर एकोमोडेशन भी है रहने के लिए है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं शिमला आ गया।
0: डीएलएड करने के बाद आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग का कार्य करने के लिए जाना है ना?
1: जी हाँ।
0: क्यों चुना आपने ये प्रोफेशन?
1: क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जिससे हम आने वाले पीढ़ियों को शेप दे सकते हैं, उनके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं,
0: क्या बात,
1: उन्हें देश का एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं।
0: आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। गीत कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: जी आशा फिल्म का गीत सुना दीजिएगा।
0: ठीक है, आपने कॉल

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व के कारण आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझ रहा है और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। अपने दो दिवसीय शिमला प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नड्डा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में एक नई सोच का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि पहले स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार की उदासीनता देखने को मिलती थी वह अब बदल चुकी है। आज समाज के सभी वर्ग, युवा, महिलाएं और आम नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि स्वच्छता अब केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व बन चुकी है। दोपहर में जेपी नड्डा होटल हॉलीडे होम शिमला में मीडिया से रूबरू होंगे और केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। राजनाथ सिंह ने कल हैदराबाद में कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति के लिए शक्ति आवश्यक है और आत्मनिर्भरता उस शक्ति का सबसे विश्वसनीय आधार है। रक्षा मंत्री युद्ध की तेजी से बदलती प्रकृति के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सुगमता और प्रतिरोध क्षमता के महत्व पर बल भी दिया। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। योजना के तहत इस वर्ष ऊना जिला के विभिन्न वर्गों के 81 चिकित्सा संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें नगद इनाम राशि भी शामिल है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: इस वर्ष ऊना जिला ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला के 81 सरकारी चिकित्सा संस्थानों को प्रदेश स्तरीय कायाकल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि ये पुरस्कार इन संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता तथा मरीजों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोहा ने अपने वर्ग में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि सिविल अस्पताल बंगाणा राज्य में तीसरे स्थान पर रहा। ग्राम स्तरीय संस्थानों के वर्ग में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनकौर ने प्रदेश में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को अपने वर्ग में दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल संपन्न हो गया। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतिम संध्या पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय के नाम रही, जिसमें दोनों कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुति से रिज मैदान पर मौजूदा हजारों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शिमला ग्रीष्मोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताएं स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में ग्रीष्मोत्सव में आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रसारित की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले से एक दिन पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास कर पिच, मौसम और आउटफील्ड की परिस्थितियों का आकलन किया। धर्मशाला में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। आज सुबह भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मैच के दौरान मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैच को लेकर क्रिकेट

0: प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। धर्मशाला में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल हल्की बर्फबारी का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने आगामी 24 घंटों तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है।
1: 13 और 14 जून संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। फिर 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में ही, जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 3 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
3: और अब FM शिमला पर वक्त है पुराने फिल्मों से कार्यक्रम का। मैं हूं आपके साथ आपकी हमसफर भानु प्रिया वर्मा, और मेरे साथ हर बार की तरह आपके लिए कुछ खास, हमेशा की तरह।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीत भानुप्रिया वर्मा के साथ। दोस्तों, 1965 वो साल था जब बेहद खूबसूरती और रिश्तों की अहमियत बयां करती आई थी फिल्म वक्त। इस फिल्म में वक्त की अहमियत का पैगाम मिला था तमाम दर्शकों को। कुछ यूँ लगा कि जैसे वक्त कह रहा हो कि फिर ना आऊँगा आपकी आँखों को, ना अब रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को जी लो, शायद मैं कल तक रुक ना पाऊँगा।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा,

0: जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से भानुप्रिया वर्मा के साथ। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड जो है वो बिना म्यूजिक के कैसा होता या हमारी लाइफ कैसी होती? ये तो करिश्मा है बॉलीवुड का कि यहाँ हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई सॉन्ग ज़रूर है, कुछ ना कुछ खास है। मतलब जो कोई कहकर अपना दर्द बयान नहीं कर सकता वो म्यूज़िक के साथ कर देता है। यही नहीं, अगर कोई खुश भी है ना तो उसमें भी खुशी से कुछ ना कुछ गुनगुनाने और झूमने झुमाने का जज्बा बॉलीवुड म्यूज़िक में है। वहीं पर ये वही म्यूज़िक है जिसके साथ आसानी से मुश्किलें हों या यूं कहूं कि दर्द के लम्हे बड़ी ही आसानी से कट जाया करते हैं।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे

0: नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

देखिए सही कहा था ना मैंने, हर जज्बात को बयां करते हैं गीत। सोचिए कितनी फुर्सत और मेहनत से ये लिखे गए, बनाए गए, पिक्चराइज किए गए, और इतनी मेहनत से, इतनी खूबसूरती से बनाए गए कि इन्हें इतने सालों बाद भी हम सुन रहे हैं तो भी लग रहा है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। तो लास्ट कुछ मिनट्स मेरे पास हैं, तो आपके लिए एक और म्यूज़िकल नंबर भेज रही हूँ किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

फिलहाल अभी पुराने फिल्मी गीतों के इस सफर को यहीं पर थामते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर, क्योंकि अब वक्त हो चला है हिमाचली लोक संगीत आप तक पहुंचाने का। तो पहाड़ी गीत संगीत के साथ चलिए अब आगाज करते हैं। सबसे पहला लोक गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ जयकरण शर्मा और साथियों की आवाज़ में। ये लोक भजन है, तो चलिए मिलकर इस भजन का आनंद लें।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब FM शिमला पर आइए सुनते हैं हेतराम तनवर और साथियों को।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम।

0: FM शिमला पर अभी आपने सुना ललारिया सरिता राणा की आवाज़ में, और अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

0: ललारिया सरिता राणा की आवाज में। और अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे

0: pm. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर वक्त है फिल्म म्यूजिक का।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं महिला सम्मेलन। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। मैं हूं आपकी सखी उमा ठाकुर और आज मेरे साथ हैं
1: साक्षी शर्मा। आप सभी का हमारी तरफ से नमस्कार।
0: नमस्कार जी। सपने वे बीज होते हैं बहनों, जिन्हें विश्वास की मिट्टी, मेहनत का पानी और धैर्य की धूप अगर मिल जाए तो वो सफलता का वृक्ष बन जाते हैं। क्यों साक्षी?
1: बिल्कुल सही कहा आपने बहनों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की कठिनाइयों से डरकर अपने कदम रोकते नहीं, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं।
0: जी, सपने, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक भावनाएं जन्म लेती हैं। सपने केवल नींद में दिखाई देने वाले दृश्य नहीं होते बहनों, बल्कि वे हमारे मन की वे इच्छा होते हैं जो हमें जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल बहनों, हर व्यक्ति के भीतर कुछ सपने होते हैं। कुछ आपके भीतर भी होंगे, कुछ हमारे भीतर भी होंगे, और कोई अपने जीवन में नई पहचान बनाना चाहता है, हर कोई बनाना चाहता है। कोई अपनी प्रतिभा को सामने लाना चाहता है, तो कोई अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर योगदान देना चाहता है। खासकर महिलाएँ तो ऐसा ज़रूर ही करना चाहती हैं। लेकिन सपनों को सोच लेना ही काफ़ी नहीं होता है बहनों, इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ज़रूरी है स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मजबूत संकल्प।
0: जी, और सपनों को पूरा करने के लिए देखिए, वैसे भी हम सभी कहते हैं ना कि जो सपने होते हैं वो हमें जीवन में एक दिशा देते हैं, और बिना सपनों के जीवन ऐसा ही होता है बहनों जैसे बिना मंजिल के कोई यात्रा। और जब हमारे मन में कोई उद्देश्य होता है तो हमारे प्रयासों को भी एक दिशा मिलती है, और सपने हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि जीवन में क्या हम बनना चाहते हैं या फिर क्या कुछ हम हासिल करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार हम अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। कभी जिम्मेदारियां, कभी डर, कभी आत्मविश्वास की कमी, कभी समाज की सोच हमारे रास्ते में जो है बाधा बन जाती है। लेकिन बहनों, हमें ये समझना होगा कि सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। यदि मन में विश्वास और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।
0: बिल्कुल साक्षी, देखिए सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है हमारा दृढ़ संकल्प, कि हम किसी काम को करने के लिए कितना दृढ़ निश्चय हमारे भीतर है। और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आप जो है एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर पा ही लेंगे। और हमें ये याद रखना चाहिए बहनों कि रास्ते में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती है ना, वे हमारी क्षमता की परीक्षा होती है, हमारी मंजिल नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारी परीक्षा ही होती है एक तरीके की, और कहीं इस परीक्षा में जाते हैं, कहीं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं
0: जी।
1: और कहीं उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए, कम से कम एक बार परीक्षा दे के तो देखना चाहिए। साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहनों स्वयं पर विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को महत्व देना आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है।
0: जी, और कई बार होता है ना साक्षी कि हम जो है अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है बहनों कि दूसरों से तुलना करने के बजाय जो है हमें अपनी स्वयं की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। और सपनों की जो यात्रा होती है ना, उसमें असफलताएँ भी आती है और कभी कभी हम डर भी जाते हैं और हार कर बैठ भी जाते हैं, लेकिन हमें फिर उस सफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना है। डर कर बैठ नहीं जाना है, बल्कि पूरी क्षमता और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है और अपनी क्षमता को पहचानना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें बैठना नहीं है, हमें कम से कम एक बार कोशिश जरूर करनी

0: हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा ही काफ़ी नहीं होती है बहनों, बल्कि समय का सही उपयोग भी बहुत ज़रूरी है, अनुशासन की भी बहुत आवश्यकता है। हर दिन छोटे छोटे प्रयास हमें बड़े लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।
1: जी
0: साथ ही बहनों, सपनों को पूरा करने में हमारी सकारात्मक जो सोच होती है ना, उसका बहुत ही अधिक योगदान रहता है, जिससे जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हम अपने सपनों को छोड़ते नहीं हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, कभी ना कभी सकारात्मकता हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद देती है, और वो उम्मीद जिसके पास होती है उसके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक पाता।
1: जी और कहते भी है ना कि एक स्वस्थ समाज जो है वही होता है जहाँ हर व्यक्ति हर वर्ग को अपने सपनों को पूरा करने का पूरा पूरा अवसर मिलता है। और बात करें अगर महिलाओं की, तो जब एक नारी जो है आगे बढ़ने का उसे अवसर मिलता है तो समाज में एक जो सकारात्मक बदलाव है वो ज़रूर आता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज की युवा पीढ़ी में जो ऊर्जा, प्रतिभा और नई सोच की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस उस ऊर्जा को सही दिशा देने की। युवाओं को अपनी योग्यता व रुचि के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और फिर मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में जो उनके सपने हैं वह ज़रूर पूरे होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा अपने सपनों को पूरा करने से।
1: जी तो बहनों देखिए, अपने सपनों को छोटा मत समझें, अपने प्रयासों पर आप विश्वास रखें, कठिनाइयों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। यकीन मानिए मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कहते भी है ना सपनों को पंख तभी मिलते हैं जब उन्हें विश्वास और अपनेपन से जो है हम दृढ़ निश्चय के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए हम अपनी प्रेरणा लेते हैं और अपने भीतर विश्वास जगाकर हमें अपने सपनों को एक नई उड़ान देनी है।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ ही बहनों आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है, और ये विषय है नशा मुक्त अभियान।
1: जी, नशा चाहे शराब का हो या तंबाकू का या फिर मादक पदार्थों का या किसी अन्य प्रकार की लत, हम कह सकते हैं वो सभी जो है व्यक्ति के जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये ना केवल उसके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है।
0: जी हाँ बहनों, नशे की शुरुआत अक्सर जिज्ञासा, मित्रों के दबाव या तनाव से बचने के प्रयास में होती है। कई युवा ये सोचकर नशे की ओर कदम बढ़ा देते हैं कि इससे उन्हें अस्थाई खुशी या राहत मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंध प्रभावित होने लगते हैं।
1: जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नशीले पदार्थों का सेवन अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। शराब और तंबाकू से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और मानसिक विकारों का भी खतरा बढ़ जाता है। यानी मादक पदार्थों का सेवन जो है व्यक्ति को अवसाद, चिंता, उनका जो व्यवहार है उसमें हिंसात्मक प्रभाव होने लगता है और कभी-कभी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपराध की ओर भी अग्रसर हो जाता है।
0: जी हाँ बिल्कुल, नशे का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, परिवार, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। घरों में कलह बढ़ता है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, समाज में अपराध तथा असुरक्षा की भावना का विस्तार होता है। इसलिए नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बहनों, ये पूरे समाज का दायित्व है कि इस नशे से लड़ा जाए।
1: बिल्कुल, देखिए नशे से बचाव का सबसे प्रभावशाली जो तरीका होता है वो है बहनों स्वस्थ जीवन शैली। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं और उसमें नियमित व्यायाम, खेलकूद, योग, ध्यान, संगीत, पठन पाठन और कई जो रचनात्मक गतिविधियाँ होती है ना उसमें युवाओं को अगर शामिल करते हैं तो उनकी सोच कहीं ना कहीं सकारात्मक हो जाती है और वो नशे से दूर रहना सीख जाते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, और माता पिता और शिक्षकों की भूमिका भी ये जो नशे के लिए है ना, या अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे और युवा अपने परिवार और शिक्षकों के साथ खुलकर संवाद करें तो वे तनाव और समस्याओं का समाधान नशे के बजाय सकारात्मक तरीकों से खोज सकते हैं। पर बहरहाल ज़रूरी है कि उसके जो माता पिता हैं, उसके जो शिक्षक हैं, वो उसे ये अनुमति दे कि वो उनसे खुलकर संवाद कर सके।
1: जी, और एक ज़रूरी बात ये भी है बहनों कि जो व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे समाज से तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है और समय पर परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से जो है अनेक लोग सामान्य जीवन भी जी रहे हैं और

0: अपनी जो दिनचर्या है उसे अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हमें जो है नशाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपराधी नहीं बल्कि सहायता और उपचार के पात्र के रूप में उन्हें देखना चाहिए।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जो स्वस्थ सशक्त और विकसित समाज का जो निर्माण है ना, वो तभी संभव है जब हमारा युवा वर्ग नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएगा। आइए सभी संकल्प लें कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और समाज को भी जागरूक करेंगे, और साथ ही जो हमारे जो बच्चे हैं, देखो बहनों, वो वही सीखते हैं जो हमारे घर में या आसपास के परिवेश में देखते हैं।
0: जी।
1: इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो माता पिता है अपने बच्चों का आदर्श बनना शुरू करें, ताकि बच्चों को नशे के नुकसान के बारे में पता चल सके।
0: जी, और बच्चों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है उन पर विश्वास और अपनापन हम सभी को दिखाना है, जो अभिभावक है, घर के बड़े बुजुर्ग है। और एक जागरूक माँ तो एक संवेदनशील काफ़ी जो घर की धुरी होती है और बच्चों की पहली शिक्षिका भी होती है। तो उन उज्जवल भविष्यों के लिए जो है बच्चे के लिए जो भी सुविधाएँ आप प्राप्त करते हैं उन्हें वो दीजिए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें उपदेश नहीं बल्कि विश्वास भी आपको देना है। केवल सफलता का दबाव नहीं बल्कि जीने की प्रेरणा आपने उनको देनी है, और एक जागरूक परिवार ही नशा मुक्त समाज की नींव रख सकता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहनों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब एक बच्चा होता है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने माता पिता या जो अपना परिवार है उसके समय की। जब वो बड़ा हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसे उनका समय चाहिए होता है, और आजकल की जैसी ज़िंदगी है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, तो ऐसे में वो अकेलापन महसूस करता है। तो ये इसकी जो है वो बढ़ जाती है कि वो नशे की तरफ चले जाएगा। तो यदि आप एक अच्छे माता पिता हैं, एक आदर्श माता पिता हैं, और जो शिक्षक हैं वो आदर्श शिक्षक हैं, तो वो ज़रूर बच्चे को वो समय देंगे। और इसका ये सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा कि बच्चा अकेलापन कभी महसूस नहीं करेगा, और ये जो जो समस्या है नशे की, ये अगर उसका कभी मन भी करेगा तो आपसे साझा करके आपसे एक गाइडेंस उसे मिल सकती है समय पर, जिससे वो इस अंधेरे भरी ज़िंदगी से दूर रहेगा।
0: जी बिल्कुल, देखिए अभिभावक की ही ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। जैसा आपने अभी कहा कि उनके साथ आप हमेशा खड़े रहें, उनसे बातचीत करते रहें, और अगर बच्चे के मन में कोई चिंता है या पढ़ाई से संबंधित कोई तनाव है तो उनके पास बैठकर समस्या का समाधान ढूंढने में उनकी मदद ज़रूर करें।
1: जी हाँ, बिल्कुल। तो बहनों, याद रखें, नशा जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि जागरूकता और सकारात्मक सोच सफलता की राह दिखाती है।
0: जी, तो चलिए बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहनों को सुनवाते हैं ये गीत।

0: बहनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र में करियर का क्षेत्र जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही फेमस हो रहा है।
1: जी
0: आज के दौर में जब युवा नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं, तो एक ऐसा नया मार्ग है जो ना केवल आत्मनिर्भरता सिखाता है, बल्कि जो हमारी धरती माँ है उसको भी पोषण देता है। ये मार्ग है ऑर्गेनिक खेती का।
1: जी और ये खेती सिर्फ ज़मीन को जोतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है, एक व्यवसाय है और अब एक जो है उभरता हुआ करियर विकल्प भी हो सकता है।
0: जी हाँ बहनों, ऑर्गेनिक खेती जिसमें जिसे जैविक कृषि भी कहा जाता है, ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या जीएम बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके प्राकृतिक तरीकों से जो मिट्टी को उर्वर बनाया जाता है, जैविक खाद और गोबर खाद का प्रयोग होता है और कीटों को दूर भगाने के लिए घरेलू जैविक उपायों का सहारा लिया जाता है। इससे उपजा अन्न ना केवल सेहतमंद होता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हितकारी होता है।
1: जी और साक्षी, देखिए बात करें अगर करियर की दृष्टि से, तो देखिए ऑर्गेनिक जो खेती का जो क्षेत्र है, अब उसमें धीरे धीरे एक संगठित और मुनाफेदार पेशा जो है ये बनता जा रहा है। और आजकल देखिए बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, होटल की अगर हम बात करें, या विदेशों में भी जैविक जो उत्पाद हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ रही है। और ऑर्गेनिक खेती को एक

0: करियर के रूप में अपनाने का मुख्य उद्देश्य यही है बहनों कि स्वस्थ उत्पादन, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना और रासायनिक कृषि से होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों के को जो है बाज़ार में बेहतर दाम दिलवाना, ये सब ऑर्गेनिक खेती करके जो है आप उसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बात कर सकते हैं। और आज के युवा किसान जो है सिर्फ खाद डालने या फिर फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे तो काफ़ी मॉडर्न है या फिर सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो उसकी वजह से जो है वे ब्रांडिंग, पैकेजिंग या ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट जैसे जो पहलू होते हैं उनकी भी उन्हें अच्छी जानकारी होती है और इस दिशा में वो अपना करियर अपना सकते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आजकल मतलब आजकल के जो किसान हैं वो पुराने वाले किसान नहीं रहे हैं। अब तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो किसानों का तरीका भी बदल रहा है, और वो मंडियों में जाने के बजाय आजकल डायरेक्ट बेचना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ऑर्गेनिक खेती है वो उनको काफ़ी लाभ पहुँचा सकती है।
0: जी
1: तो अगर हम बात करें कमाई की, तो ये जो जैविक खेती होती है ना, इसमें लागत थोड़ी कम होती है लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। परंतु जो उत्पादों का दाम होता है ना, वो बाज़ार में 2 से 3 गुना अधिक मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो सामान्य गेहूं होती है ना, उसकी तुलना में जो ऑर्गेनिक गेहूं होती है उसकी कीमत अधिक होती है। कुछ युवा किसान अपने फार्म ब्रांड बनाकर भी प्रतिवर्ष 5 से 10 लाख रुपए तक की इसी से आमदनी कर रहे हैं। साथ ही जो ऑर्गेनिक फल, सब्जी, मसाले या चाय है, उसकी निर्यात से कमाई की संभावना तो और भी अधिक हो जाती है, क्योंकि इसकी बहुत अधिक डिमांड रहती है देश में भी और विदेशों में भी।
0: जी, और इसके अलावा देखिए बहनों, अगर कोई युवा जो है ऑर्गेनिक खेती को अपना करियर बनाना चाहता है, उसके बारे में और ज़्यादा उसकी बारीकियों को सीखना चाहता है, तो इसके लिए जो है विशेष कोर्स और डिग्रियां भी उपलब्ध हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान, जैविक कृषि, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी आप डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ, और योग्यता की बात करें तो किसी भी छात्र को 12वीं के बाद बीएससी कृषि, बीएससी ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कोर्स में दाखिला मिल सकता है। इसके बाद छात्र एमएससी या डिप्लोमा कोर्स में विशेषज्ञता ले सकता है, और आजकल तो कई संस्थान जो हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी करवा रहे हैं, जिसमें किसानों और युवाओं को जैविक खेती के आधुनिक तरीकों और जानकारी दी जाती है।
0: जी, और जहाँ तक रोज़गार की बात है तो बहनों देखिए, ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो युवा होते हैं ना, वो स्वयं भी एक उद्यम बना सकते हैं, और इसके साथ ही वे कृषि सलाहकार या ऑर्गेनिक फार्म प्रबंधक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी किसी भी पद पर काम करके एक अच्छी खासी आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो अंततः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऑर्गेनिक खेती केवल खेती नहीं है बल्कि एक हरित आंदोलन है। ये एक ऐसा करियर है जिसमें रोजगार भी है, आत्मनिर्भरता भी है, और सबसे बड़ी बात प्रकृति से जुड़ाव भी है। यदि युवा इस क्षेत्र में पूरी जानकारी, प्रशिक्षण और मेहनत के साथ उतरें तो ना केवल खुद का भविष्य संवार सकते हैं बल्कि पूरे देश को स्वास्थ्य और समृद्धि की राह पर ले जा सकते हैं।
0: जी, तो बहनों देखिए, अगर आप भी इस क्षेत्र में यानी ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में सोचें और अपने करियर को एक अच्छी उड़ान दें।

0: तो बहनों चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ आसान से घरेलू किचन टिप्स जो आपकी रसोई को और भी स्मार्ट और हेल्दी बना देंगे।
1: जी हाँ बहनों, टमाटर की ग्रेवी बनाते समय उसमें छोटा चम्मच बेसन या मखाने का पाउडर डालें। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और स्वाद भी बढ़ेगा।
0: जी, और अगर सब्जी या दाल में मिर्च ज़्यादा हो गई हो तो उसमें थोड़ा सा दूध या मलाई आप डाल सकते हैं, या फिर आप एक छोटा उबला हुआ आलू भी छीलकर डाल सकती हैं।
1: जी हाँ बहनों, प्रेशर कुकर में आलू के साथ एक एक चुटकी नमक पानी में मिलाएं। इससे आलू जल्दी उबलते हैं, या फिर आप आलू को दो टुकड़ों में काट कर उबाल सकती हैं। इससे वे जल्दी पक जाएंगे।
0: जी, सब्जी या ग्रेवी में अगर नमक ज़्यादा हो गया हो तो बहनों उसमें आप छोटा थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा का उसका छोटा सा गोला आप लेकर उसमें उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। ये नुस्खा जो है, जो नमक ज़्यादा होता है उसे सोख लेता है।
1: जी हाँ बहनों, चाय बनाते समय उसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर या तुलसी की पत्तियां अगर आप डालती हैं तो इससे चाय का जो स्वाद है वो बहुत बढ़ जाता है, और साथ ही ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।
0: जी, और साथ ही बहनों देखिए, सब्जियों को अगर आप 10-15 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में नमक और हल्दी डालकर रखती हैं ना, तो इससे सब्जी से कीड़े और मिट्टी जो होते हैं लगे हुए उस वो निकल जाते हैं।
1: तो बहनों, हमें उम्मीद है कि आप भी अपने किचन में ये टिप्स अपनाएंगे और अपना जो किचन का कार्य है वो इजी बनाएंगे।
0: जी।

ये था महिला सम्मेलन कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं।

0: एक बजने को हैं। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात

0: राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a six-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the eighth consecutive G7 summit to

आप ये सॉन्ग्स इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर। मैं हूं आपके साथ भानुप्रिया वर्मा और मेरे साथ ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो कि आपको ले जाएंगे आपकी ओल्ड मेमोरीज में। फिलहाल एंजॉय कीजिए झांझरिया।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। म्यूजिक मस्ती को फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आगाज करते हैं उस प्रोग्राम का जिसके नाम से आप अच्छे से मुखातिब हैं। जी हाँ, ये प्रोग्राम है सबरंग और इस प्रोग्राम में आपके लिए हम आप लेकर आते हैं संगीत के विविध रंग। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए जो हम एफएम शिमला पर रंग लाए हैं ना, वो है मोहब्बत का। अब देखिए ना, मोहब्बत में बेशक दूरियाँ बढ़ जाएँ लेकिन खास वक्त हमेशा तन्हा उसी खास शख्स के इंतज़ार में बीतता है।

सुन रहे हैं आप सबरंग प्रोग्राम एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब मोहब्बत के रंग के बाद चलिए आपको सुनवाते हैं ये सूफियाना रंग आबिदा परवीन की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर

0: रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमएस स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित Sword of Honor विशाल कुमार को प्रदान किया गया। Order of Merit में भी Officer Cadet विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण

0: किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं।

0: समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM शिमला सुन रहे हैं आप और FM शिमला पर अब वक्त हो चला है प्रोग्राम शिखरों के स्वर का। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ बेहद खास और सुरीले लोकगीत।

ये लोक भजन अभी आपने सुना एफएम शिमला पर रामचंद की आवाज़ में। एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर, और शिखरों के स्वर में आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आते हैं हिमाचली लोक संगीत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रभा देवी की आवाज़ में ये लोकगीत।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर, और इस वक्त समय हुए हैं 2:40। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं किशन वर्मा की आवाज़ में कार्यक्रम का ये लोकगीत।

शिखरों के स्वर में लोकगीत अभी आपने सुना रोशनी शर्मा की आवाज़ में। अब आइए कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं सुनपति और लक्ष्मी की आवाज़ में।

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास, पुनर्निर्माण और जन कल्याण के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इन अवसरों को जनहित में बदलने में विफल रही है।
2: मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, यहाँ एक धारणा बनाई जा रही है और सुखविंदर जी की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने बढ़ चढ़कर हिमाचल को हमेशा समर्थन दिया है, आर्थिक सहायता दी है और जो ड्यू नहीं है वह भी देने का प्रयास हिमाचल को किया गया। भारत सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में आज प्रशासनिक अव्यवस्था, निर्णयहीनता और नीतिगत अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्य सचिव और डीजीपी सहित मुख्यमंत्री भी अति

0: अतिरिक्त चार्ज पर हैं और सरकार दिल्ली से चल रही है।
1: ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, डीजीपी एडिशनल चार्ज पर है, वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है, ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में

0: भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, यहाँ छोड़ करके जाना चाहते हैं।
1: नड्डा ने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनमत है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देशव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। नड्डा ने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझ रहा है और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध जाखू मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास व सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश को निरंतर आगे बढ़ा रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन योग और ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वे आज लुधियाना में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के दौरे के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग और ध्यान न केवल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि संतुलित सकारात्मक और सार्थक जीवन जीने के लिए भी अत्यंत प्रभावी साधन है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग ध्यान और समग्र कल्याण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। धर्मशाला में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत के विकास का आधार आधारभूत संरचना और वाचक हैं पूनम शर्मा।
1: आधारभूत संरचना आज पूरे देश में रोजमर्रा की जिंदगी और अनुभवों को आकार देती है। रेलवे, सड़कें, हवाई अड्डे, डिजिटल नेटवर्क, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों ने जरूरी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है। इन प्रणालियों ने लोगों के यात्रा करने, डिजिटल रूप से जुड़ने और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के तरीके को भी प्रभावित किया है। 2014 के बाद से आधारभूत संरचना विकास तेजी से व्यापकता एकीकरण और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित हो गया है। इस अवधि के दौरान एक बड़ा बदलाव आधारभूत संरचना नियोजन का एकीकरण था जो पहले की खंडित परियोजना क्रियान्वयन की प्रथा के उलट था। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक ढांचागत निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। सागरमाला, भारतमाला, पीएम गति शक्ति, PMAY जल जीवन मिशन, PM उज्ज्वला योजना और उड़ान जैसी प्रमुख परियोजनाओं ने अवसंरचना तक पहुंच का विस्तार किया। इन पहलों ने ढांचागत विकास को घरेलू कल्याण, आर्थिक

0: अवसर और क्षेत्रीय विकास से जोड़ा। परिवहन नेटवर्क आर्थिक एकीकरण की रीढ़ की हड्डी है। राजमार्गों और रेल मार्गों से लेकर हवाई अड्डों, जलमार्गों और शहरी परिवहन प्रणालियों तक परिवहन के विभिन्न साधनों में किए गए निवेश ने संपर्क को और मजबूत किया है। ये नेटवर्क मिलकर एक अधिक सुगम और एकीकृत गतिशील तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में 2014 से व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिससे परिचालन में क्षमता, दक्षता, सुरक्षा और सेवा वितरण में सुधार हुआ है। भारत की स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें बेहतर गति, आराम और ऑनबोर्ड तकनीक प्रदान करके आधुनिक रेल यात्रा को और भी बेहतर बनाती हैं। अप्रैल 2026 तक देश भर में 162 वंदे भारत सेवाएं परिचालन में हैं। साल 2014 से भारत के सड़क नेटवर्क में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और आर्थिक गलियारों में संपर्क बेहतर हुआ है। राजमार्गों, सड़कों और बाईपास के लिए नीतियों द्वारा समर्थित पहलों का फोकस उच्च गति कॉरिडोर विकास, आर्थिक नोड कनेक्टिविटी और शहरी भीड़भाड़ को कम करने पर रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़क संरचना के माध्यम से ग्रामीण संपर्क को बदल दिया है, जिससे बाजारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार हुआ है। इस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं ने दुर्गम भूभागों और रणनीतिक क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाया है। डिजिटल प्रणालियों ने हवाई अड्डों पर यात्रियों के अनुभव और परिचालन दक्षता में सुधार किया है। डिजी यात्रा जैसी पहलों ने चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से निर्बाध और संपर्क रहित यात्रा को सक्षम बनाया है। 2015 में गगन के संचालन से जो विश्व की पहली भूमध्य रेखीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, नेविगेशन सटीकता और उड़ान सुरक्षा में वृद्धि हुई है। ये बेहतर स्थान सटीकता के माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया और खोज एवं बचाव कार्यों में भी सहायता करती है। विमानन क्षेत्र में विस्तार ने पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों सहित दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच में सुधार किया है, साथ ही पर्यटन, व्यापार और आवागमन को भी बढ़ावा दिया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। मेट्रो के निर्माण की रफ्तार में भी तेजी आई है। पिछले 12 वर्षों में देश भर में मेट्रो विस्तार में लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निवेशकों और उद्यमों के लिए औद्योगिक आधारभूत संरचना में पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाया है। अवसंरचना आधारित औद्योगिक विकास ने विनिर्माण गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को बेहतर बनाया है। इसने द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में निवेश, रोजगार सृजन और विनिर्माण गतिविधि के विस्तार को समर्थन दिया है।
1: भारत के विकास का आधार आधारभूत संरचना, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सामायिक चर्चा और वाचन स्वर था पूनम शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर और FM शिमला पर आप अब हमारे साथ एंजॉय करेंगे ओल्ड हिट्स।

वो कहते हैं ना कि इश्क की ना तो उम्र होती है ना ही कोई दौर होता है, इश्क तो सिर्फ इश्क है, जब भी होता है बेहिसाब होता है। इस वीकेंड में आप हैं एफएम शिमला पर भानु प्रिया वर्मा के साथ और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स।

निदा फाजली का लिखा ये गीत कानों से सीधा दिल में उतरता है। आवाज ही ऐसी है ना, जिसे सुने बगैर रहा ही नहीं जाता, जिसमें खोए बगैर रहा नहीं जाता। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी ने जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं इतनी मोहब्बत से गाए हैं कि सुनने वालों के दिल तक आसानी से पहुँचते हैं। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जिस किसी शख्स के लिए, जिस किसी एक्टर के लिए उन्होंने गीत गाए हैं, वो डेफिनेटली वो पॉपुलर तो हुआ ही हुआ है। अगर हम उनके सिंगिंग करियर की बात करें ना, तो रफ़ी साहब ने 1940 से लेकर 1980 तक तकरीबन 26,000 गीत गाए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर हर तरह के गीत गाए हैं, जैसे भजन, गज़ल, देशभक्ति गीत और कव्वाली। इसके अलावा उन्होंने खास तौर पर गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी और इनके अलावा ऋषि कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे तमाम बड़े स्टार्स के लिए गीत गाए हैं, अपनी आवाज़ें दी हैं। और कभी गौर कीजिएगा, जब भी आप इन सॉन्ग्स को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो आवाज़ें इन एक्टर्स की है ही नहीं, बल्कि वो आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। एक ऐसी आवाज़ जो हर एक एक्टर के चेहरे पर बिल्कुल सूट करती थी।

फिलहाल आपको हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर है आप इस वक्त हमारे साथ। फिलहाल 3:30 होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ये वक्त होता है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम युववाणी का। तो आइए सुनते हैं मिलकर युवाओं की वाणी, युववाणी।

प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग रंगों में ढाला है, लेकिन सम्मान और अधिकारों का रंग सबके लिए एक समान होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त दिशा। दोस्तों, हमारी दुनिया विविधताओं से भरी हुई है। कोई अपने विचारों से खास है, कोई अपनी प्रतिभा से, तो कोई अपनी अनोखी पहचान से। प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग रंगों और रूपों में ढाला है, और यही विविधता इस संसार को खूबसूरत बनाती है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसी ही एक विशेष पहचान की, जिसे समझना और उसके प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिन एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मान, समानता और जागरूकता का संदेश देता है। जानेंगे एल्बिनिज्म के बारे में और भी ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों आइए, अब जानते हैं आखिर एल्बिनिज्म है क्या। हो सकता है आप में से ये शब्द ही पहली बार किसी ने सुना हो या इसके बारे में ज़्यादा ना जानते हो। दरअसल एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में पाया जाने वाला मेलेनिन पिगमेंट बहुत कम या बिल्कुल नहीं बनता। ये मेलेनिन पिगमेंट ही हमारी स्किन, हमारे हेयर्स यानी बाल और आंखों को रंग देता है। इसी वजह से एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों की त्वचा, बाल और आंखों का

रंग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा हल्का हो सकता है। लेकिन एल्बिनिज्म सिर्फ बाहरी रंग रूप तक ही सीमित नहीं है, इससे जुड़ी और भी कठिनाइयाँ होती है।

तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन कठिनाइयों की जिनका सामना एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को करना पड़ता है। मेलानिन की कमी से इनकी त्वचा धूप के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसके अलावा कई लोगों को देखने में भी दिक्कत आ सकती है, जिस वजह से पढ़ाई या रोज़मर्रा के कुछ कामों में मुश्किलें हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद एल्बिनिज्म से प्रभावित लोग भी अन्य लोगों की तरह अपने सपने पूरे कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब

बात ये आती है, जब एल्बिनिज्म कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर इसके लिए एक अवेयरनेस डे मनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तब तक के लिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आइए बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना की ओर। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्य हेतु किया जाता है।

सूचना। अब एक बार फिर लौटते हैं अपने आज के विषय इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की ओर। हम बात कह रहे थे कि जब एल्बिनिज्म कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर इसके लिए एक विशेष जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल आज भी बहुत से लोग एल्बिनिज्म के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। कुछ लोग इसे एक बीमारी समझ लेते हैं, तो कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि यह छूने से फैल सकता है। कई बार लोग एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को दूसरों से अलग समझने लगते हैं या उनकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, जबकि वास्तव में एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जो ना तो संक्रामक है और ना ही किसी व्यक्ति की प्रतिभा या क्षमता को कम करती है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और समाज में सम्मान, समानता तथा जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

दोस्तों, अल्बिनिज़म के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं। एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ स्वीकार करें। अल्बिनिज़म से प्रभावित लोगों को किसी विशेष सहानुभूति की नहीं, बल्कि समान अवसर, समान और सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। याद रखिए, किसी व्यक्ति का रंग रूप उसकी पहचान का केवल एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसके विचार, उसके गुण और उसकी प्रतिभा से बनती है। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि एल्बिनिज्म क्या है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है और इसके प्रति जागरूकता फैलाना क्यों आवश्यक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके विचारों, गुणों और प्रतिभा से होती है। हर रंग की अपनी पहचान है और हर पहचान सम्मान की हकदार है। इसी संदेश के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त दिशा आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी साझा करेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भानुप्रिया वर्मा के साथ। और इस प्रोग्राम में जो कि बिल्कुल हमारा आखिरी प्रोग्राम है फिलहाल अभी का, वो उसमें आप सुनेंगे बहुत सारे म्यूजिकल नंबर्स विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो बी विद अस ओनली ऑन FM शिमला।

हाँ ग्रेट, दैट वाज लकी अली फ्रॉम सिफर, और आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। देखिए कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी सुना जाए, जितनी बड़ी बार सुना जाए उतनी बार उन्हें सुनने का मन करता है, लगता है बस एक बार और सुन लिया जाए, एक बार और सुन लिया जाए। और ऐसा मैक्सिमम उन सॉन्ग्स के साथ होता है जिनके साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है, जिनके साथ आपकी कुछ खास यादें होती हैं। एनी हाउ, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो जी इन्फॉर्मेशन आपको ये हम बता देते हैं कि आखिरकार जो हमारा यहाँ शिमला शहर की जो रौनक थी, कल उसका आखिरी दिन था समर फेस्टिवल का और आखिरी रात थी, खूब लोगों ने एंजॉय किया। इवन कि जो कल की जो जितना भी क्राउड था वो उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जगह पर ट्रैफिक जाम है, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसा मैक्सिमम लोगों को लगता है जो इस वक्त मॉल रोड की तरफ हैं, रिज की तरफ हैं। और देखा जाए तो समर फेस्टिवल का जो खूबसूरती है, जो नशा है, वो अभी भी लोगों के सर पर चढ़ करके बोल रहा है। कुछ और खास बातें आपको बताएं कि इस प्रोग्राम में, उसके लिए आप रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी बिल्कुल, धूम धूम तो हो रही थी कल रात को जब था समर फेस्टिवल की लास्ट नाइट। यार लोगों ने खूब इंजॉय किया और बहुत ही बढ़िया जो है देखा जाए तो समर फेस्टिवल के दौरान हिल्स क्वीन शिमला का नज़ारा रहा। यहाँ आने वालों का बहुत बहुत लोगों का जो है अपना डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी रहे, ट्रैफिक भी रहा, और जो लोकलाइट्स हैं मैक्सिमम लोगों को जो है आने जाने में दिक्कतें भी रही थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से, कि ट्रैफिक जो है स्मूथली चल नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था एक तरीके से। खैर कभी कभी ये नज़ारे देखने को मिलते हैं पॉजिटिव नोट पर अगर हम देखें तो, और ये अच्छा भी है ना, देखिए शिमला शहर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा वहीं से हो जाता है। एनी हाउ शिमला शहर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा एक और चीज़ से होता है और वो होता है यहाँ के ये मौसम की वजह से। तो मौसम की जहाँ तक बात है तो काफ़ी गर्मी हो गई थी पिछले दिनों में, लेकिन 2-1 दिन से जो है मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है। धीरे धीरे कुछ एक जगह पर जो है ठंडी हवाएं पहुँच रही हैं, कहीं पर बारिश की बूंदें पहुँच रही हैं, और कहीं पर जो है अभी भी इंतज़ार हो रहा है कि आखिरकार कब ये जो है ठंडी ठंडी फुहारें उन तक पहुँचें और गर्मी से जो है उन्हें निजात मिले। खैर अगर मौसम विभाग की बात माने तो 18 तारीख तक जो है मौसम जो है ऐसा ही बना रहेगा, और बीच बीच में कुछ एक इलाकों में बारिश भी होगी और कुछ एक जगह पर जो है

काफ़ी फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी गई है, लोगों से कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है तमाम सैलानी या लोकलाइट्स जो भी हैं नदी नालों के किनारे पर नहीं जाएं इस दौरान, क्योंकि कब वाटर लेवल हाई हो जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मौसम तो जी अपना रंग दिखाता ही है ना, मौसम के मिजाज तो अक्सर बदलते रहते हैं और किस वक्त उसका कौन सा रंग देखने को मिल जाए ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। तो हमेशा ही जाए अपनी सेफ्टी का जो है ख्याल रखें आप, और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक ऐसे मौसम में ट्रैवल भी नहीं करें आप। सुन रहे हैं आप FM शिमला 103.7 MHz पर, भानुप्रिया वर्मा के साथ। सुनते रहिए और ये सॉन्ग इन्जॉय करते रहिए।

बरसो रे मेघा मेघा, श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया गुरु मूवी से। खैर अब देखिए, चलते चलते बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आप पहुँचे। सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के एंडिंग में कि अपना ख्याल रखें, आप सुनते रहें आप FM शिमला। मौसम कोई भी क्यों ना हो, जब जब मौसम चेंज होता है तब तब उसका सीधा सा इफेक्ट आपके, हमारी, हम सबकी हेल्थ पर देखने को मिलता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें आप, अपडेटेड रहें आप मौसम के साथ, अपडेटेड रहें आप अपने आसपास के माहौल के साथ। सुनते रहें FM शिमला, यूं ही। दें आप भानुप्रिया वर्मा को इजाजत, लेकिन FM शिमला के साथ ट्यून इन रहें। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

जी सुने तुसीं ये लोक गीत। ते अब इस दे बाद देखा जी असां ने छोटी जी जानकारी तुसां का साझा करनी सी है जनगणना 2027 दे बारे विच। देखा जी जनगणना जिहड़ी है माणुआं दी सिर्फ एक गिणती भरनी है। इस दे कन्ने असां जो ये पता लगता कि असां दे देश दे विच जिहड़े माणु रहा करते हैं से कुछ हालात दे विच रहा करते हैं तिन्हां का क्या क्या सहूलत हैं ते होर क्या क्या कमियां हैं। ये गल्लां जानने की वजह कन्ने असी क्या कर सकते कि जिहड़ी सरकार है से अगे अपनी नीतियां जिहड़ी है से बनाई सकती ताकि होर भी माणुआं दे कल्याण दी जन कल्याण दी स्कीमें जिहड़ी है से उतारी जान ते तिन्हां दा फायदा जिहड़ा है से आम माणु जो होए। कि जो कि दिखा जी अगर कोई दफ्तर दे विच बैठे दा है तां से ए नहीं कोई पॉलिसी बनाई सकता नीति बनाई सकता कि किसान जिहड़ा है से क्या करया करता है ना जी, क्या क्या मशीनरी इसका है, कदे कदे बीज जिहड़े हैं से तिन्हां दा इस्तेमाल करता ते आगे जिहड़े है से तिस वास्ते कदे पॉलिसी जिहड़ी है से बनाई जानी चाहिए। इस वास्ते देखा जी माणु जो तिसदा ज्ञान भी होना।

चाहिदा। ते अगर अस जनगणना की गल करिए तां जनगणना 2027 दे पहले चरण दे विच घरां दी ही गिणती होनी है ना जी। अब घरां दी स्थिति भी इस दे विच चैक की जानी कि मकान जिहड़े बने दे से कच्चे हैं कि पक्के हैं। तो हिमाचल प्रदेश दे विच जिहड़ी है से 16 जून 2026 का 15 जुलाई 2026 तकर ये पहला चरण जिहड़ा से होना। इसका ठीक देखा जी 15 दिन पहले यानी 1 जून 2026 का 15 जून 2026 तकर स्वगणना। स्वगणना मतलब अपनी गिनती जिहड़ी है से तुसी आपू भी दस सकते। इस वास्ते हर माणू c.census.gov.in ये जिहड़ा पोर्टल है भारत सरकार का, इस पर जाई करके अपनी तुसी जानकारी भरी सकते, अपने बारे विच पूरा जिहड़ा इसे ब्यौरा दे सकते। ते जनगणना 2027 दा कम डिजिटल माध्यम का ही छापिया जाना। जिवें मैं तुसां नूं दस्सिया कि पहले चरण दे विच मकान, दूजे चरण दे विच तुसां दे टब्बर जो क्या क्या सहूलतें जिहड़ी हैं से मिली दी हैं, तां मतलब इहदे इहदे तकरीबन 33 प्रश्न जिहड़े असे पुछे जाने। तो जनगणना अधिनियम जिहड़ी 1948 है तिस दे तहत ये सारी जानकारी जिहड़ी है से बिल्कुल गुप्त रखी जानी, कुसी जो नहीं दसी जानी। तो तुसी बेझिझक जिहड़ी है से अपनी जानकारी इस पोर्टल पर जिहड़ा है से दे सकते। मैं तुसां जो पोर्टल दा एड्रेस एक बारी फ्री दसी देंदा, c.census.gov.in। ते देखा जी एक माणू दा फर्ज होंदा किसी देश दा जागरूक नागरिक बने, सही सही जानकारी जिहड़ी है से अपनी भरे, ताकि सही सही नीतियां भी जिहड़ी है से बनाई जान, ते लोकां दा कल्याण हो तो देश दा भी कल्याण हो। अब तुसां जो सुणांदे अगला लोकगीत आवाज़ है जी नियामत हुसैन दी।

साल होई गए ते इसदे बाद भी अस मनो दी हाले सोच नहीं बदली। शामी कोई कुड़ी घरे का बाहर निकलती तो तिस जो भी तिस दे माँ बाप जो भी ये चेतन होंदा किसे हिफाजत करने जड़ी ऐसे पूजी कि नहीं पूजी है ना। तो देखा जी सारे का बड़ी गल ये है कुड़िया की हिफाजत, तो हिफाजत होनी जी ऐसे बड़ी भारी जरूरी है। तो अस दिखते अजकल अखबारों के भी सुनते दे खबर पढ़ते लिखते है ना, तो सोशल मीडिया पर भी असं दिखते रहते। तो अज भी असं जो जी ऐसी अपनी सोच बदलनी है कि जितनी हिस्सेदारी मुंडे की है तितनी ही कुड़ी की है, तो बराबर का हक है। तो तिन्हां दी जिहड़ी हिफाजत है से असां दा हरेक समाज के हरेक माणू का जिहड़ा है से फर्ज है। तो दूजी गल यह है जी कि तिन्हां दी पढ़ाई लिखाई हिफाजत दे कन्ने कन्ने पढ़ाई लिखाई भी बड़ी भारी जरूरी है। अब तिन्हां जो ये नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी स्कूलों तक ही भेजा जाए, नहीं जी, तिन्हां जो अब अगे बधाना है असां ने, तो उच्च शिक्षा जिहड़ी है से उच्ची दर्जे की शिक्षा भी पढ़ाई लिखाई भी तिन्हां का करवानी है। ते जड़ा असी बोलते कि ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट मतलब कि जिहड़ी कुड़ियां कुसी भी वजह कने अपनी पढ़ाई लिखाई जिहड़ी है से छड़ देंदी, तो तिस जो भी असने मुकाना है। ते कुड़ियां जो आज इतना ताकतवर असने बनाना है किसी माली तौर पर समाजिक तौर पर बिल्कुल जिहड़ी है से मजबूत होन। तो इस वास्ते देखा जी होर भी कई स्कीमें जिहड़ी हैं सी भारत सरकार ने चलाई दी हैं, जिवें सुकन्या समृद्धि योजना तिन्हां दे विच इक है। तो असां दी बेटियां हैं, इन्हां दी हिफाजत भी असां दा फर्ज है, तो इन्हां दी पढ़ाई लिखाई भी असां दा ही फर्ज है। तो फिर एक होर गल ये है कि जिहड़ा असां दे देश दे विच घटता होया लिंग अनुपात है तिस दे विच भी सुधार जिहड़ा है से आना, तो ये सारा होना जी पढ़ाई लिखाई दे कन्ने। तो ये तो गलबात हुई गई जी, अब चलते चलते तुसां जो सुनाना प्रोग्राम दा आखिरी लोकगीत, आवाज़ है जी राज प्रभाकर दी।

सभिनी सुनने वारे जो राकेश शुक्लानी री नमस्कार। आज तुसा जो लोकगीत भी सुनाने कने जी सौर ऊर्जा रा इस्तेमाल कने अटल पेंशन योजना इदि बारे भी दसना कने जनगणना 2027 रा पहला चरण शुरू हो गया इदि बारे भी तुसो जानकारी देनी कने जी नोईता जी भी दसनी जी ताजी सभिनी दे पहले असा नोईता जी सुन लेनी जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा आज शिमले रे चौड़े मैदाना स्वच्छता अभियान मंज भाग लिया दसिया के भई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान जो देशव्यापी और जन आंदोलन रे रूपा मंज अगे बधाया जाएगा। नड्डा द्वारा दसिया गया कि भई मुल्क हरे सब माणुआ जो स्वच्छता रे बारे जागरूक होना जरूरी है भई सब अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी कने इदे बाद जाखू मंदिर मंज पूजा अर्चना हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा दसया गया कि भई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत भी प्राचीन योग और ध्यान परंपरा जो वैश्विक मंच पर स्थापित करने कठे प्रयास होना लग रहे लुधियाना मंज स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पैरामिड रे दौरान बोलिया कि भई तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली मंज योग और ध्यान दे वधिया भई स्वस्थ रहे हैं कने भई दसया गया कि आने वाले साल मंज भारत योग ध्यान और समग्र कल्याण रे क्षेत्र मंज विश्वरा मार्गदर्शन करने री क्षमता रखा। केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुल्क भरा बाल

नारी सशक्तिकरण रा एक बड़ा अभियान बन गया रहा। भाई महिला और बाल विकास मंत्रालय अनुसार पिछले 10 साल मंज भाई लिंग अनुपात 918 दे बदी कने भाई 929 हो गया। माध्यमिक स्तर पर भाई मठियारा नामांकन भी लगभग 75% दे बदी कने भाई 80% के करीब हो गया। कने मंत्रालय द्वारा दस्या गया कि भाई इदी योजना दे बालकारी शिक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण जो बढ़ावा भी मिलना लग रहा। ताजी ये ता तुसे जी नोई ताजी सुनी जी, हुन सुनना जी असा लोक गीत। ताजी सुना जी ये लोक गीत।

जी तुसें सुनेआ लोक गीत, आवाज थी कंवर सिंगारी। ताई देखा जनगणना 2027 राजू पहला चरण से शुरू होने वाला। इधर मंज भाई देखा मकान सूचीकरण, घर की गणना रा आयोजन देखा हिमाचल प्रदेश राज्य मंज निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 दे 15 जुलाई 2026 तक होगा। कने इधर पहले 15 जून 2026 सोमवार तक भई स्वगणना रा विकल्प सब हिमाचल वासिया जो मौजूद रहेगा। भई निवासी एसई सेंसस भई जीओवी इन पोर्टल पर जाई कने अपनी जानकारी भरी सकें। जनगणना 2027 रा कामकाज डिजिटल माध्यम और भई संपादित होगा। प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस और एप्लीकेशन रे माध्यम दे सूचना संकलित होंगी। कने पहले चरण मंज भई मकाना री स्थिति और टबरा जो मिलने वाली सुविधा परिसंपत्तियां दे संबंधित कुल भई 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। कने जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना मंज दी जाने वाली जानकारी भई गुप्त रखी जाएंगी। कने इधरा इस्तेमाल मकसद सिर्फ नीति निर्माण और अनुसंधान और काम काजा कट्ठे होंगा भाई। ताई देखा भाई उना सा एक गलबात करनी भाई सौर ऊर्जा रा जो इस्तेमाल भाई आसे सब जाना है भाई सौर ऊर्जा रा इस्तेमाल आसा तो बहुत फायदेमंद है। सूर्य प्रकृति रा सबसे बड़ा ऊर्जा रा स्रोत आ कने धरती पर जीवन रा आधार आ और सूरज दे मिलने वाली ऊर्जा जो और भाई देखा सौर ऊर्जा बोलाएं कने ये एड़ी ऊर्जा ही भाई कभी भी खत्म ना होने वाली ऊर्जा ही कने देखा भाई पर्यावरण कठे भी ठीक रहे हैं भाई। और आज दुनिया ऊर्जा संकट दे देखा गुजरना लग रही कने देखा भाई कितने बिजली आई कमी और कितने भाई देखा खाना बनाने कठे गैस आई कमी लग रही होना कने भाई इधेड़ा प्रदूषण की समस्या भी भाई होनी नहीं कने भाई सौर ऊर्जा भी एक समाधान कने होना लग रहा भाई ऊर्जा के रूप में कने सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन कट्ठे भी होना लग रहा भाई सोलर पैनल कने सौगी बिजली बनना लग रही कने भाई देखा आज ग्राम दे लई कने शहरा घरा स्कूला और अस्पताला दफ्तरा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होना लग रहा कने जी एड़ा भाई देखा सौर ऊर्जा का फायदा काफ़ी ज़्यादा भाई अगर असे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करगे और इदी बारे जानकारी लेंगे कने एड़ा भाई इदे बिजली के बिलों में भी कमी आनी कने ऊर्जा की बचत भी होनी कने सोलर वाटर हीटर कने सौगी भाई सूर्य री जो ऊर्जा ही भाई इद्या से भाई देखा पानी भी गर्म कर सकें कने देखा भाई घरा ग्राउ में जो पानी गर्म कर कट्ठे देखा से भाई सूखी लकड़ियाँ भी बालाएँ कने बिजली का इस्तेमाल भी कराएँ तई जे देखा भाई ऊर्जा री बचत होनी कने एड़ा भाई देखा होटल अस्पताल और घर मंज इधर इस्तेमाल भी होना लग रहा भाई देखा नहीं तुसे भाई अस्पताल गास कने कने जेड़ा भाई ये जो होटल है भाई सोलर पैनल छता गास लग रहे हैं कने इधर इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होना लग रहा कने और भाई देखा सोलर कुकर की सहायता दे जो सोलर कुकर भोजन बनाई सकें इधी दे देखा परण भी ठीक रहे हैं और आ सारा स्वास्थ्य भी ठीक रहा भाई ना धुआं होंदा कने भाई और भाई देखा धुएं दे कई सारी बीमारियां भी होना लग रही आधे आसे भाई देखा इधे बचते रहने। आज किसान बागवान द्वारा

सौर ऊर्जा दे चलने वाले पंप है, कहना भाई देखा इधर इस्तेमाल होना लग रहा, कितने स्प्रे लग रही होना पंपा दे, कहने इधे भाई सिंचाई भी जो आसानी कने होना लग रही। होर भाई देखा जो इध मंज डीजल लगा, कहने इधर जो खर्च होने वाले से भी देखा आसो जो देखा डबे बचाएं। कहना देखा जी तुसे भाई सौर ऊर्जा दे चलने वाली स्ट्रीट लाइटा भाई आसारे ग्राम देखा भाई अब ज्वाला ही ज्वाला हुई गिरा, जगह जगह स्ट्रीट लाइटा लग रही और शहर मंज बनना लग रही, ग्राम बनना लग रही।

इमेज जो जो इमेज तेल पानी लगा से पाना पाँ भाई कने दूर दराज इलाके मंज भाई सौर ऊर्जा दे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी लग रहा होना भाई कितने देखा आज सारे मुल्क आ एड़ी भी देखा भाई भाई जो आ सारा मुल्क आ साल भर धूप आ रहे हैं कने भाई देखा सौर ऊर्जा दे आस देखा फायदा ले सका है और ये तो देखा भाई मुफ्त हज मिलने वाली ऊर्जा ही ये जो देखा भाई सौर ऊर्जा बुलाएं यही कारण भारत में सौर ऊर्जा की संभावना काफ़ी ज़्यादा हुई रही कने सरकार द्वारा सौर ऊर्जा जो बढ़ावा देने कठे कई सारी योजना भी चलाई जाने लग रही। आज तो देखा भाई मोबाइल वाला जमाना भाई आसे भाई ये मंजे फोन खोज कर सकें और आसे भाई पता कर सकें भाई यहाँ जो क्या क्या योजना लग रही मेरे ना सौर ऊर्जा दे कने आसे भाई फायदा ले सकें ग्राम रे इलाके मंज सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजना भी शुरू होना लग रही कई कई सारे ग्राम मंज इध दे माणुआ जो स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मिली सको भाई। सौर ऊर्जा रे इस्तेमाल दे भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सका अगर ऐसे भाई इधर फायदा लेंगे तो सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा ही ऐसे सब जाना है भाई सौर ऊर्जा दे कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ बिजली खर्चे में भी कमी आई कने ये नवीनकरणीय ऊर्जा ही कने कभी भी खत्म ना होने वाली ऊर्जा ही है कने देखा भाई जिथी बिजली की लाइना नहीं पुज सकती भाई बिजली के पोल नहीं पुज सकते ता एड़ी जगह भाई सौर ऊर्जा दे बिजली बनाई सकें भाई सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करी कने पर्यावरण जो बचाने मंज भाई ऐसे सहयोग कर सकें कने सौर ऊर्जा रा से भाई इस्तेमाल कर सकें ता जी ये ता थोड़ी जी जानकारी थी जी ता सुनना जी ऐसा लोकगीत ता जी सुना ये लोकगीत।

जी तुसें सुनया लोकगीत, आवाज़ थी राजकुमार वर्मा री। ताई देखा थोड़ा मनोरंजन भी होई गया जी। तो भाई ऐसा हूँ गलबात करनी अटल पेंशन योजना आसे। भाई देखा सब जाना है भाई अटल पेंशन योजना भाई भारत सरकार एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, कने एक भाई फायदेमंद योजना है सब माणुआ कटे। भाई भाई माणुआ जो बुढ़ापे मंज आर्थिक सुरक्षा देने कटे ये योजना शुरू हुई रही। इदी योजना री शुरुआत 9 मई 2015 जो भाई मुल्खारे प्रधानमंत्री द्वारा हुई थी। ये योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र मंज कामकार जो काम काज करा हैं भाई जेबे से भाई सियाने हो जाएं तेबे भाई देखा हर महीने पेंशनर रूप में डबे दिते जाएं। कने अटल पेंशन योजना रा मकसद एड़े मानुआ जो सामाजिक सुरक्षा देना हा जो भाई देखा छोटा मोटा काम करा हैं कने से दिहाड़ीदार है कने भाई गरीब है और भाई मजदूर है किसान है कने छोटे बागवान है कने भाई रिक्शा चलाएं और छोटे दुकानदार है कारीगर है भाई इदी योजना रा फायदा एड़े मानुआ जो है। भाई इदी योजना रे माध्यम दे सरकार द्वारा भाई 60 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन दी जाए कने इदी योजना कट्ठे 18 से 40 साल रा देखा जो कोई भी माणुआ भारतीय नागरिक भाई आवेदन कर सका। कने एड़ा जी देखा इदी योजना में शामिल होने कट्ठे बैंक अंदर बैंक खाता होना जरूरी आ कने हर महीने भाई बैंक खाते में भाई देखा जो डबे से जमा करने हुए कने डबे माणु री उम्र और तय सीमा के अनुसार पेंशन दी जानी। कने भाई जो माणु आ से भाई देखा आधार कार्ड कने देखा कोई भी भाई चाहे से राशन कार्ड हो भाई इदी कठे भाई देखा जो भी आवेदन फॉर्म भराएं तेबे भाई डॉक्यूमेंट होने बहुत जरूरी है। अटल पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बाद 1,000 डबे दे ली कने भाई 5,000 डबे तक हर महीने पेंशन के रूप में डबे मिलने। कने एड़ा जी देखा इदी योजना मंज सब दे ज़्यादा फायदेमंद एड़ा हुआ भाई अगर माणु री मौत भी हो जाए ना कने ये पेंशन भाई तीसरे जीवन साथी जो मिलती रही। कने कभी वेड़ा भी हो जाए भाई जो टबर अंदर दो आई भाई देखा से मर जाए तब भाई से जो तीम से नॉमनी रख रहा भाई एड़ा जो से भाई देखा से पेंशन एड़े मानू जो से मिलती रहनी। कने एड़ा भाई देखा और इदी योजना रा देखा सा जो फायदा लेना जरूरी आ कने और इदी योजना रा द्वारा टबरा जो आर्थिक सुरक्षा दीती जाए। भाई ये जो अटल पेंशन योजना ही इधरा खास मकसद भाई मानुआ रे जो जीवन स्तर आ इदी जो बदाना कने भाई देखा आसे भी देखा के भी देखा डबे बगैर फंसी भी जाएं भाई डबे भी नहीं होंगे ता इधरे तरह तो भाई

का आसे भाई आर्थिक जो सहायता से सरकार द्वारा भाई मिलाई कने भाई ए योजना गरीब माणुआ कट्ठे ही कने जो संपन्न माणु हैं भाई इदी योजना रा देखा ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते कने और इदी योजना रा मकसद माणुआ जो बचत करना सिखाना कने भाई और बढ़ावा देना कने जीने कट्ठे हौसला देना आशा जो देखा भाई अटल पेंशन योजना रा भाई देखा फायदा लेना जरूरी आ आसे भाई देखा इदी बारे पता कर सका है। अगर भाई आसे अटल पेंशन योजना रा फायदा नहीं ले रहा तासे इधरा फायदा ले सकाए भाई और भाई आसा जो जरूरी आ इदी बारे भाई जानकारी और जागरूक होना बहुत जरूरी है। ताई देखा तुसे ये थोड़ी जी जानकारी सुनी जी ताजी उन सुनना जी आसा लोक गीत ताजी सुना ये गीत।

जी तुसें सुनेआ कृष्ण भजन, आवाज़ थी ज्वाला प्रसाद शर्मा री। ते देखा इदी सौगी मंडियाली कार्यक्रम रा वक्त पूरा लग रहा। आ गया देवा, नमस्कार।

आकाशवाणी शिमला बिल्दी 5:20:45 हो रहे पेश है तुम अपना मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सभी जने ब्रह्मदत्त शर्मा तरफ बिल्दी नमस्ते। जी तो सुनने वाले अखबार फिर तुम सभी के स्वागत स्वागत करता जितने भी हैं कार्यक्रम सुन लगो रहे भले इसे रेडियो पुट मोबाइल पुट चलती मोटर कार अंतर टीवी पुटे कोई भी कार्यक्रम सुन लगो रहे श्रोता तन्हें सभी के स्वागत है। और कार्यक्रम अंतर आज से बदे इन लोकगीत जे अंतुरे से विनय अवरोल ता सीमा अर्जु आवाज अंतर और सुनीता अरोड़ा शांति विष्ट राजेंद्र ठाकुर एने लोकगीत जे कलाकार आस्ते एने गीतारी के आवाज अंतर से बदे इन लोकगीत सुनाने साथ ही साथ हंसे गलबात जे करनी अस्ती स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकारे स्कीम अस्ती और मतलब जे बदलाव अस्ता कि कैसे हिसाब है सपो आसपास प्रदेश अंतर घर परिवार और साफ सफाई इसका हिसाब ध्यान थिए तस बुढ़े यहाँ से गलत कहानी है। भारत सरकार शुरुआत की इतनी तक विशाल राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान तो इस बुढ़े यहाँ से गलबात करनी है और साथ ही गल ये भी कहनी है कि शिक्षा व्यवसाय दी जरूरी है कतरे जरूरी है तस बुढ़े भी यहाँ से गलबात जी तस से कहनी है। कार्यक्रम में जे शुरुआत हस्ती से आज के जे समाचार हस्ते तेने जे कहनी हस्ती केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तने बोलू कि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई तने बदली देशे जे राजनीतिक जन सांस्कृतिक जनविश्वास क्या तने से मजबूत पशुपालकों की जे आजीविका और सुधार दी प्रदेश सरकार चुराई नीति 2026 दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया तने बोलू कि जे हे मेले आई उत्सव आई त्यौहार आई हैं संस्कृति अख अभिन्न अंगस्ता साथ ही साथ भारत तथा अफगानिस्तान जे दो का क्रिकेट मैच जे थिया ही धर्मशाला अंतर दिया टीमें कहीं जे तैयार भी आमने सामने भी प्रदेश अंतर आज जे ता ओलावृष्टि तूफान जे ता चलो रास्ता प्रदेश अंतर अधिकांश भाग्य अंतर आज जे ता से काफ़ी बदलाव ये रहा और 24 घंटे दौरान अंतर जे राज्य अंतर अधिकतम स्थान हल्की बारिश तथा भीषण गर्मियाँ के यहाँ राहत जे तसे हथियारे धर्मशाला अंतर रात भर मूसलाधार बारिश हुई इसके अलावा रोहतांग सहित प्रदेश जो ऊंची ऊंची चोटियाँ थी तने भी मतलब प्रदेश

अलग अलग भागांतर 24 घंटे दौरान अंतर आंधी तूफान चलने जे सिलसिला जे तस से जारी है और मौसम विभाग ऐसे चीज़ें पूरी जानकारी जे अस्ती तस से दूरी है। अथी हैं कुछ प्रदेशे खास समाचार कार्यक्रम में जे शुरुआत अस्ती से विनय अवरोले आवाज अंतर है तशुणे बदियन लोकगीत फिर लें तुहें जाओ गलबात।

વિનય અવરોલ તથા તને સાથી કે આવાજ દ્રૌપદી નું લોકગીત હે શોને બાળે શોણો જરૂર આનંદ ને રહોણા શોને બાળે મેં દહેં જે ગલ લાણ લો થે કે સ્વચ્છ ભારત મિશન જે તો ભારત સરકાર દ્વારા જે શરૂઆત હોતી થી અક વિશાલ રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છતા અભિયાન અસ્તા એઝ એ યોજના અસ્તી એસે શરૂઆત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी 145वें जयंती पुठे शुरुआत की थी। ऐसे अभियान आई ऐसे मुख्य उद्देश्य भारत अंतर जे पूरी तरह जे साफ सुथरा और खुले अंतर शौच मुक्त जे तसे बढ़ाना थिया। इस मिशन ने दो प्रमुख भागें अंतर विभाजित किया। पहला जे अस्ता ता से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दो का जे अस्ता से मतलब जे खास करके व्यवहार अंतर जे करें मतलब दो का चरण ये है कि 2014 अंतर शुरू हो जाए और ऐसे प्रभाव जे तस्पुटी से गलबात जे तसे कहनी है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एस जे मतलब जे खास करके आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसे जे कार्यभार कम जस्ता तैसे संभालता। उद्देश्य ये है कि खुले अंतर शौच जे इता से उन्मूलन और देश अंतर जे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र अस्ते तसे व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण करना यानी साफ सफाई और गंदगी विशेष ध्यान तस चीज किया निपटारा करना ठोस तथा तरल जे कचराई प्रबंधन तसे प्रबंधन करना शहरियां तथा जे खास करके ग्रामीण इलाके थे ग्रां क्या जे निकलने वाला जे कचरा थे तसे शत प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके जे तसे प्रबंधन करके पुनर्चक्रण मतलब तसे दोबारा बनाई करके तसे जे तसे यूज हुए। व्यवहार अंतर परिवर्तन का हिसाब हो सकता जे हैं मैन वस्ते तन्हें स्वच्छता प्रति जागरूक करने और अख जन आंदोलन जे तसे बढ़ाना सुबह क्या व्यक्तिगत तौर पुठे इंसान अपनी साफ सफाई विशेष ध्यान थिए फिर आपु परिवार खास करके घर परिवार अंतर कस परिवेश अंतर बिछते साफ सफाई आई कूड़ा करकट आई या आपु घरे आसपास से सफाई आई फिर ग्राएँ सफाई आई कैसे साफ है मतलब व्यवस्थित तरीके से आप ग्रां अंतर बिछते और फिर अख तहसील लेवल गल इनती कि भाई यहाँ तहसील अंतर कैसे साफ है जेता साफ सफाई कम जेता से भूण गोरा विभिन्न विभाग अस्ते कोई भी अपने अपने विभाग संभाल करके पहले घर संभाल तना पुथा फिर विभाग तो फिर जिले अंतर गलिनती फिर प्रदेश अंतर गलिनती फिर देश अंतर गलिनती अगर घर क्या सुधार न भूल तो फिर देशे और प्रदेशे गलत बड़ी दूरे गल आई। अगर इंसान अपनी साफ सफाई ध्यान न थेल आपो घर परिवार आपो आस पास वातावरण हिसाब साफ थेल गीला कचरा सूखा कचरा अगर शहरी अंतर रहते तो मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गाड़ी इनती और जैसे मतलब एक जे गंद अस्ता जे कूड़ा करकट है प्लास्टिक है या पॉलिथीन अस्ते तैसे हंस इरे वरे इस्तेमाल न करे और अक जगह कूड़ा दान अंतर हंस करे गीला कचरा और सूखा कचरा तेने हंस मतलब प्रॉपर तरीके से अगर हंस दिएल तो साफ सफाई जे तसे ध्यान रहना अस्ता दो की गल ग्राएँ अगर हंस गल अस्ते तो खास करके माल मवेशी अंस जे तो ग्रां अंतर थे ते गाय आई भैंस आई है ना खच्चर आई घोड़ा आई और बिल्ली कुत्ता चित्र भी एक पशुपालन जे मतलब तरीके जे कहते तन्हें जे खाद आई गोबर आई तो सही तरीके जे इस्तेमाल करें गंदगी ना फैलाए और ग्रां अंतर जे कोई

प्लास्टिक है या कोई कूड़ा कचरा है या फिर मतलब शौच मुक्त ग्राम का वर्णन करे भारत सरकार प्रदेश सरकार जे तथा चीज़ दी बड़ा अख मुहिम चलौरी की से पंचायत जे अस्ति तसे भी सम्मानित लौरी कहनी स्वच्छ पंचायत जे ता से तने मतलब अवार्ड हतीर्ण गोरे तने इनाम हतीर्ण गोरे तने पंचायत आंदी अच्छा बजट हीण गोरा तो एनी एनी जे ग्राम अंतर जे स्कीम मतलब तैयारियाँ आई तसे सुविधा कहने लौरी। फिर गल इनती कि एक जागरूकता महनो अंतर भी है जागरूक भूई करे के जन आंदोलन जे तसे बढ़ाना और बड़ी महत्वपूर्ण गल ये है कि मैनुअल स्केविजिंग है ना जी जसनों अस बोली सकते कि हाथ जे मैला ढोने वाला जे खात्मा थिया से भारत सरकार है जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 मतलब 14 अंतर जे शुरुआत की थी तो ऐसे खात्मा क्या कि मतलब खास करके ये गल है कि अस्वच्छ शौचालय तथा फ्लश जे शौचालय है तेने बदलना प्रमुख प्रथम चरण है ऐसे जो शुरुआत 2014 के उन्नीत कर चलो थी जैसे तहत अंतर देश भरी अंतर 10 करोड़ के अधिक शौचालय निर्माण जे तसे किए रहा। 2 अक्टूबर 2019 देश अंतर जे सब जे ग्रां थे खुले अंतर शौच मुक्त ग्रां जे तसे घोषित कर चुके थे। अच्छा दूसरे चरण अंतर इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तसे शुरुआत किए थे। ऐसे लक्ष्य ये थिया कि खुले अंतर शौच मुक्त जे स्थिति अस्ति से बढ़ानी आई और खुले अंतर शौच मुक्त प्लस जे कचरा मुक्त शहर अस्ते या ग्रां अस्ते तसे निर्माण करना भारत सरकार एक बड़ी जबरदस्त मुहिम चलाई थी और ए मुहिम जे त बिल्कुल 100% काबिल और 100% जे तसे सफल भी हुई। मिशने जे लाभ थे और तसे जे प्रभाव थे खास करके जे हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज अस्ते 2014 अंतर 39% थियाँ अब लगभग 100% है। स्वास्थ्य अंतर सुधारी आई गया खास करके जे डायरिया जनी बीमारी थी जानलेवा बीमारी थी ए कोई बड़ी मतलब लाइलाज बीमारी नहीं होती लेकिन आंसे खुद मतलब तैयार की थी गंदगी के यहाँ है ना जी। तो संक्रमण वाली जो बीमारी जे तने खत्म होने जे संक्रमण वाली जो बीमारी है तने बेले जे मौतें भी होने लगू थी तो तथंतर भारी जे तसे कमी आई गई। दूसरी गल ये कि नारी सुरक्षा सम्मान तो नारी सुरक्षा सम्मान है अगर अस गल कि हर घर अंतर सरकार है बोलो कि भाई अस भी कुछ इमदाद दें थे तुम भी कुछ अपो तरफा कोशिश करें और सरकार है जे तसे मदद करनी शुरू कर छड़ी। पंचायत लेवल क्या काम शुरू हुआ ग्राम लेवल क्या काम शुरू हुआ कि भाई घर घर अंतर शौचालय जे तसे जरूरी है जे हैं महिलाएं अस्ती बहन बेटियां अस्ती तो तेने दी मतलब अनहारो होने इंतजार नहीं था कहना कि भाई अब अनहारो हुए ता कोई मतलब ऐसे हेरे नू और कोई ऐसे काय नू और बड़े छुप छुप करके मतलब शौच गंदी है से जे सुरक्षा है से चीज़ जे तसे ख़त्म की नारी सुरक्षा सम्मान जे तदंतर वृद्धि हुई हर घर शौचालय बन गया और महिला जे इतनी तसे अंधेरे इंतजार जे तसे ख़त्म हो गया। होरी गल ये कि सर्कुलर इकोनॉमी अंतर बढ़ावा है दिया कचरा के यहाँ जे कंचन और बायोगैस परियोजनाएं के माध्यम जे जे नवे रोजगार अवसर जे तसे पैदा हुएंगे। ऐसे उद्देश्य ये था कि भारत जे ता शौच मुक्त हुए और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन ऐसे कम हुए और साथ ही साथ प्लास्टिक मुक्त भारत हुए हाथियाँ जे जे मैला ढोने वाली जे प्रथा है तसे अंत हुए और वैज्ञानिक तकनीक अपनाए भाई समाज अंतर व्यवहार तसे जे सामाजिक तथा व्यवहारिक तसे उद्देश्य किए कि समाज जहाँ व्यवहार करके मतलब जे सिर्फ कागजें पुठे से बात न रहे लेकिन व्यवहार अंतर से भी बात जे तसे अंसक जे भे सुबह के महत्वपूर्ण गाली भुई कि भले ही से स्कूल लेवल गल भुई कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर जितने भी शिक्षण संस्थान आस्ते और साथ ही साथ अलग विभाग वन विभाग है स्वास्थ्य विभाग है ना लोक निर्माण विभाग आस्ता और शिक्षा विभाग आस्ता कोई भी ना विभाग ने कि जथंतर जन जन आंदोलन अख मुहिम न बनाए कि भाई आप मतलब भले ही से दफ्तर हुए भले ही से ग्राम हुए और पंचायत हुए प्रदेश हुए देश हुए हर महीनों जे योगदान जे तसे महत्वपूर्ण हुआ और अख जन आंदोलन तैयार हुए करके मैं जागरूक करके स्वास्थ्य प्रति जे तसे जागरूक किए तो स्वास्थ्य प्रति जागरूकता ता ही बढ़ सकती कि अगर सबको व्यवहार अंतर बदलाव करें सुबह क्या महत्वपूर्ण गल जो मैं तुम्हें जो बताई कि अगर इंसान अपो पर्सनल मतलब जे व्यक्तिगत स्वच्छता जे अगर गल शुरुआत करेल फिर यहाँ सपो जे तो घर से घरे साफ सफाई आस पड़ोस से साफ सफाई ग्रह साफ सफाई पंचायती साफ सफाई और

है ना जी, अपना तहसील लेवल है और फिर जिला लेवल, जिला स्तर पर उठे और प्रदेश स्तर पर उठे, देश स्तर पर उठे, ताई कम जाए तसे अगर बढ़ सकता। जे स्थानीय निकाय थे से मजबूत करें और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता एजे एस पुट जाए तसे ज़्यादा जोर जाए तसे दता, भले ही से व्यक्तिगत तौर पर हुए और समाजी तौर पर हुए, सरकार भी तथा अंतर बढ़ चढ़ करके हिस्सा निया और जे भी विभाग थे तेने पुट हुए और ग्रह ग्रह गह करके जागरूक अभियान चलावे कि भाई अगर अस स्वच्छ साफ तरीके जे विषय ले दुख बीमारी के अस दूर रहने वास्ते अच्छा भोजन स्वस्थ भोजन करे स्वस्थ तरीके जे रहे और गंदगी के बचे ता से बीमारी जे तसे छू नहीं सकती और डायरिया जनी बीमारियाँ के अस जे मौत अंतर जे वृद्धि थी से कम हुई। तो ए जे मतलब जड़ी जबरदस्त मुहिम चलाई थी भारत सरकार 2014 महात्मा गांधी जे 145वें जयंती थी तस जयंती उद्देश्य उपलक्ष्य पूठे ए अभियान जे भारत सरकार चलाई थी और पूरी तरह जे ते सफल भी हुआ। तो खैर मौके गल थी ए कोई मतलब कैसे क्या छुपोरी गल नहीं और बोते ना स्वस्थ मन स्वस्थ तन अंतर भी भगवान जयता से वास करता। तो मौके गल थी मैं तुम्हें जेलाई सुनीता अरोड़े आवाज़ तो लोकगीत है इतना सुने लोकगीत आनंदनीय फिर लें तुम्हें जो हो रही गल बात।

सुनीतार आवाज़ इंद्रपदे लोकगीत हैं सुने बड़े सुने जरूर आनंद नियरा पौना सुने बड़े आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि जनगणना 2027 है जे प्रथम चरण आस्था ऐसे जे मकान सूचीकरण तथा मकानी के जे गणना आस्ती तस्से आयोजन पूर्ण गोरा और हिमाचल प्रदेश राज्य अंतर जे निर्धारित तिथियाँ आस्ती तस्से अनुसार 16 जून 2026 के 15 जून 2026 तक जे तस्से होना आए और इसके ठीक 15 दिन पहले यानी 1 जून 2026 के 15 जून 2026 तक रजियाई तसे स्वजनगणना तसे विकल्प भी सभ्या हिमाचल वासी के जे जे तसे उपलब्ध होना है। निवासी जे अस्तेता SE.census.gov इनपुट है पोर्टल पुट घाय करके तुम पूरी जानकारी जे तसे भरी सकते। जनगणना 2027 जे का कम कम अस्ता से डिजिटल माध्यम जे जे तसे संपादित भूण पूरा साथ ही साथ जे ऐसे जे प्रथम चरण अस्ता जैसे मकान के जे स्थिति अस्ती परिवार जे तसे उपलब्ध होनी अस्ती प्रथम चरण जे मकान अस्ते तसे जे स्थिति है परिवार उपलब्ध सुविधाएं परिसंपत्तियां कुल 33 प्रश्न जे अस्ते तसे पूछीण अस्ते साथ ही साथ जे परि जे तथंतर उपलब्ध सुविधाएं अस्ती तसे परिसंपत्तियां जे 33 प्रश्न जे पूछने पूछने जनगणनाई माध्यम जनगणनाई जे अधिनियम 1948 अस्ता तसे अंतर्गत जनगणना जे तसे पूरी जानकारी जे इतने गोपनीय होनी है मतलब छुपाई के थैनी अस्ती जे प्रश्न तो क्या पूछेण अस्ते और साथ ही साथ जे उपयोग केवल नीति निर्माण तथा जैसे जे अनुसंधान काम आस्ता तसे जे के ऋण लोगोरा एक महत्वपूर्ण जानकारी अस्ती और मुगल इविलानी अस्ती कि जे हैं शिक्षा व्यवसाय जे कस हिसाब जे तसे जरूरी अस्ती शिक्षा व्यवसाय जे जन कि कोचिंग सेंटर अस्ते स्कूल आई ऑनलाइन टीचिंग अस्ती एजुकेशनल ऐप अस्ती तसे शुरुआत जे तसे सही योजना कानूनी मान्यता बेहतरीन जे इंफ्रास्ट्रक्चर अस्ता बड़ी जरूरी अस्ती भारत अंतर इस क्षेत्र अंतर काफ़ी जे तसे संभावनाएं अस्ती और लेकिन अस्ती अख जरूरी आवश्यक जे तसे आवश्यकताएँ के जे आवश्यकता इसे पूरी करनी है और कानूनी प्रक्रिया खास करके जैसे रजिस्ट्रेशन आते है ना पंजीकरण सिर्फ होना जरूरी आता बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे नॉस बोली सकते और से जे तत्व अपू संस्थान जेड भी मतलब जे उद्यम रजिस्ट्रेशन आई पोर्टल पुट खाई करके MSME तहत पुट है अख ट्रस्ट जे आता सोसाइटी रूप जे रजिस्टर जे था करनाई था सो और व्यवसाय जे मतलब जे टैक्स तथा लाइसेंस आता व्यवसाय दी टर्नओवर हिसाब जे जे GST नंबर नैना से भी जरूरी आता और स्थानीय नगर निगम शॉप तथा जे एडजस्टिव एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तसे तहत जे लाइसेंस नैना भी जरूरी आता और NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र ठीक है और अगर एज ए फिजिकल सेंटर को जड़ भी तुम्हें खोलना आता तसे स्थानीय जे अथॉरिटी अस्ती तटके फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी नंबर सेफ्टी तसे NOC नैना जे तसे जरूरी आता टैक्स रजिस्ट्रेशन सरकारी नियमित तहत जे GST तथा पैन कार्ड आवेदन करना और अस जे साथ साथ जे योजना अस्ती से मार्केट रिसर्च हिसाब जे अगर गल लें तसे बिजनेस प्लान अठोस रणनीति अस्ती तसे शुरुआती तौर पर जे खर्च आई फीस आई और से स्ट्रक्चर भविष्य अंतरक सुधार विस्तार जे विवरण जे तसे दैनती टारगेट ऑडियंस तय कते कि एज ए संस्थान अस्ते कतरी उम्र होनी चाहिए और जे स्कूल अस्ते प्री स्कूल आई या बोर्ड स्कूल अस्ते है ना और खास करके जे प्रतियोगिताएं जे दैनी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा उस पर की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं से कब रस्ते तेने दी दैनी अच्छे जरूरी है और जगाई के हिसाब चाइन करना मतलब एनी जगह चाइन करे कि जड़ी गभरू के आना जाना जे तसे भोज सके

सुदामा राम का गाया भरमौरी लोकगीत अभी आपने सुना, आइए अब सुनते हैं मंडियाली लोकगीत सूरज मेहता की आवाज़ में।

0: लोकगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTS सेवा पर भी उपलब्ध है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास, पुनर्निर्माण और जन कल्याण के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इन अवसरों को जनहित में बदलने में विफल रही है।
2: मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, यहां एक धारणा बनाई जा रही है और सुखविंदर जी की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बढ़ चढ़कर हिमाचल को हमेशा समर्थन दिया है, आर्थिक सहायता दी है और जो ड्यू नहीं है वह भी देने का प्रयास हिमाचल को किया गया। भारत सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में आज प्रशासनिक अव्यवस्था, निर्णयहीनता और नीतिगत अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्य सचिव और DGP सहित मुख्यमंत्री भी अतिरिक्त चार्ज पर हैं और सरकार दिल्ली से चल रही है।
2: ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, DGP एडिशनल चार्ज पर है, वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है, ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है, कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, यहां छोड़ करके जाना चाहते हैं।
1: नड्डा ने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनमत है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को गुमराह करने वाला करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली विशेष आर्थिक मदद और RDG बंद कर प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया है। विनय कुमार ने कहा कि GST के नए स्लैब से प्रदेश को पिछले कुछ वर्षों में करीब 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। वे नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। राज्य सरकार ने ऊना

जिले के हरोली में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए 28.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए विश्वसनीय व पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना आने वाले समय में क्षेत्र को आधुनिक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के इंडोर स्टेडियम कल्याड़ा में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता

0: ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में 15 जून को मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा जिले के विभिन्न उपमंडलों में भी ये अभ्यास सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलाया जाएगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य में कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात भी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो साड़ा प्यार भरा नमस्कार, हाजिर हन तुसां दा पसंदीदा कार्यक्रम ले कन्ने। कार्यक्रम च अज तुसां जो छैल छैल लोकगीतां सौगी जानकारी देनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बारे च, गल करनी है समाज च कुड़ियां दी भूमिका, कन्ने प्रदेश दियां खास खास खबरां भी तुहानूं जो सुनाणियां हन। पर सारे ते पहले शुरुआत करना लगे हन पुष्पलता दे गाए इस लोकगीत सौगी।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले के कमला शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, खास खास खबरा प्यारे प्यारे लोकगीत और कुछ एक विषय रे बारे दा आसा गल बात करनी, पर सभी ते पहले आसा जिस विषय रे बारे दा गल करनी से हिमाचल आसा रा जो है देवी देवताओं री भूमि है। तो चलो कर लिए गल बात। तो देखो जी, आसा रा हिमाचल प्रदेश जो है देवी देवताओं री भूमि बोला जाओ, और इति कणा कणा दे जो है अध्यात्म भी बसा दा है। राज्य रे लगभग हर गाँवों का अपना एक कुल देवता, वो स्थानीय देवता, वो जो लोगों रे जीवन और संस्कृति रे तक जो है अभिन्न अंग माना जाओ। तो प्राणिक कथा रे अनुसार इति ऋषि विशिष्ट व्यास और परशुराम जी द्वारा तपस्या करी गई थी। इथो रे हर गाँव रा एक देवता ओ जेते खे जो है लोग तन बना साथ तीसरी पूजा करो, और इथा रे देवता केवल मूर्तियों तक ही सीमित नहीं बल्कि इनारा बड़ा प्रभाव अभी ओ। तो मान्यता अगर देखी जाओ तो देवते आसारी भूमि परिवार और फसलारी रक्षा करो, और देवते रा निवास स्थान जेती हो ते देखे जो है देव स्थान बोला जाओ। यो देवी देवता आसारे कष्टा खे दूर करो और आशा खे आने वाले कष्टा ते बचाओ। जे कोई बारे माणू रो देशा दे परदेशा दे तो तिनारी जो है वो पैरेदारा रे रूपा दे तिथि भी रक्षा करो, और तेरा रे वक्ता इनारे डोल नगाड़े और दूजे जितने भी बजाने वाले यंत्र हो तिनारी पूजा विशेष रूपा साथी करी जाओ, और प्रेशी राती रा भी जेड़े दैली खे और जेठी साजी खे जो है देवस्थाना दा ही आयोजन करा जाओ। ए प्रेशी रात ए वो की रात कटी कर देवस्थाना दी ब्यागा पूजा अर्चना करी कर जो है तिथो रे स्थानीय लोगों तिथ गाँव रे सेव करे जाओ। तो इथों रे देव देवी देवता हर गाँव रे अलग अलग है, जेडे मान लो बाड़ी देवता और मंडोड़ी देवता, शिरगुल देवता, हरसिंह देवता और बाडू बाड़ा, मनसा माता, तो ये हर गाँव रे देवता है। देव शिरगुल और हाटकोटीरी दुर्गा माता जेडे इमा चला दे जेती जेती भी स्थान है गाँव है ये जो है तिथा तिथो तिथो रे देवते और देवी मानने जाओ, और इनारी जो है विशेष तरह साथी जो है पूजा अर्चना करी जाओ। और ये जिते जिते जगह रे ओ यो तिथे तिथे जगह री जो है वो रक्षा कराओ एड़ा माना जाओ। तो इतरे अलावा जो है हिमाचला दे पांच शक्तिपीठ भी है जो तीना बिचा थे एक बिलासपुरा दे माता माता नैना देवी और चिंतपूर्णी कांगड़े दे और चमुंडा देवी बिच कांगड़े दे ही है, ब्रिजेश्वरी माता रा स्थान भी कांगड़े दे ही है। तो इनारी यो शक्तिपीठ जो है विशेष उपासाते जो है प्रसिद्ध है। तो इन शक्तिपीठारी केवल धार्मिक विशेषता ही नहीं बल्कि जो यो प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आरी तक भी माने जाओ। तो ब्रिजेश्वर मंदिर जो पौराणिक कथा रे अनुसार बोला जाओ कि यह मंदिर बहुत ज़्यादा समृद्ध था, यानी कि इतनी जो है बहुत ज़्यादा सोना चांदी इतने मंदिरा दे ओ था, पर विदेशी लुटेरों द्वारा जो महमूद गजनवी 1009 ईस्वी दे इति आया था तो तीन जो है शहर और मंदिर बहुत बुरी तरीके से लूटा था, और

1905 दे जोरजार जब भूकंप आया था तो ये पूरी तरह साथी जो है नष्ट भ्रष्ट हो ही गया था, और 1920 दे इतने के जो है दोबारा बनाया गया था जो वादा थे ये भूवी शक्तिपीठ बनाना ही है। अगर आज से चिंतपूर्णी इतिहास की बात करी तो प्राचीन कथाओं के अनुसार माना जाओ कि 14वीं शताब्दी दे माई दास नामक एक जो है दुर्गा भगत वो था जो सच्चे मन साथी जो दुर्गा माता री पूजा अर्चना करो था और से माता के अपनी इष्ट देव देवी जो मानो था। तो बाद में क्या हुआ कि सिंहवाहिनी माता जो है तिसके दर्शन दे और बोला कि डाला निट्टे जो है बहुत पुराने वक्ता थे आऊँ जो है रहू है, पर तिस वक्ता जो है लुटेरे रे आक्रमण और अत्याचारारी बजाते माखे इथोरे लोग भूल गए और मेरा मंदिर जो है दबी गादा, और आऊँ पूरी तरह से तेरे जो है कुल्लारी रक्षा करूँगी, तू मेरी पूजा अर्चना जो है करा कर। पर जो माईदास भगत था तिने बोला कि इतनी माँ केड़े पूजा अर्चना करनी, इति तो बहुत ज़्यादा घना बण है, ना कोई रहने लायक जगह है ना पीने जोगा पानी है। तो भगतपति जी ये बोला कि आऊँ ताखे वरदान देऊँ जितनी जगह देवी ता पाथर पटना तिती जो है पानी निकलना, तो तिस पवित्र पानी होते जो है मैं तू रोज जो है मेरी पूजा करा करे। और आज भी तिथि जो है बड़ा रे डाला निटे जो चिंतपूर्णी रा सुंदर मंदिर है और इतने जगह दे पानी लेकर रोज जो है माता री पूजा अर्चना करी जाओ। तो जो चामुंडा माता रा मंदिर है ये 700 साल पुराना है लगभग और एक नदी रे किनारे बसा दा है, और इस विशाल मंदिर री विशेष महत्व ये है कि इति जो है सतचंडी रा पाठ सुनना और सुनावना बहुत फायदेमंद हो, और इति इड़ा करी कर जो है सारे कलक कलेश जो करा दे से खत्म हो जा, और 51 शक्तिपीठ बिचाते एक जो है बहुत ज़्यादा मान्यता रखो, और इतना वातावरण भी बहुत अच्छा और पवित्र है। इड़े तो सारे शक्तिपीठ ही बहुत सुंदर शांत और बहुत मन शांति देने वाले हो, पर बोला जाओ कि ये विशेष रूपा साथी जो है इतनी मान्यता है, तेती पूजा अर्चना अगर कोई करो तो तिसके जो है तीसरे सारे शत्रु और विनाश हो जाओ, और तिसके जो है काफ़ी ज़्यादा रिद्धि सिद्धि और समृद्धि जो है माता दी हो। तो शक्तिपीठ तो बहुत पवित्र और ऊर्जावान स्थान तो ओ ही एड़े नहीं कि थी जो हज़ारों माणुओं रा तांता रोज लग जाता, पर गलू आसारे विश्वासारी मानो तो पत्थरा देवी भगवान है और धार्मिक स्थल आसारी हर मनोकामना के पूर्ण करने वाले हो, और दुखी के सारा देने वाले, गरीबी मटियोने वाले और रोगी के निरोगी काया देने वाले हो। जेड़े भी कोई माणू अपनी जो मनोकामना लेकर इन्ना सामने जाओ राखो तो सी वो पूरी करो, यो शक्तिपीठ हमेशा ती श्रद्धालु और साथे जो है तिनारी आस्था रा प्रतीक बने दे रहे। तो इतरी तक जो है हिमाचला के जो है देवी देवताओं री भूमि बोला जाओ, और देवी देवता री भूमि जो है इतर तक भी बोला जाओ क्योंकि भारत देवी हजारों हजारों री श्रद्धालु जो इति आओ अपनी मान्यता लेकर, और जो तिनारी मान्यता पूरी हो तो सी अपने समर्थ्य अनुसार इति जित जो भी तिनारी दिने मांगी दियो इच्छा रथ जो छत्तर हो या दिनारे जो भी इच्छा पूर्ति के दिने मानना था से हो जो है माता रे चरणा दे से हो और देवते रे चरणा दे जो से हो छाड़ी जाओ।

प्रयास जो है करा गया और देश भरा रहे सभी कस्बे और गांव शहरा के जो है साफ सुथरा जो है शामिल इदे करा गया ताकि जो है स्वच्छता बनी दी रह सको। तो इदे शामिल करा गया प्लास्टिक का ते रक्षा, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता श्रमदान, स्वच्छता ही जो है मानूरी सेवा है। तो बादा ते वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा करी कि साफ सुथरा भारत मिशन 2.1 के जो है स्वास्थ्य और कल्याण घटका रहते तहत लागू करा गया और चरण दुआ दे 1 लाख ते कम आबादी वाले सभी जगहों दे जो है शहरारी बस्ती हो चाहे गाँवारी ते दे जो है सीवरेजरी पाइप जो बिछाई गई। तो पर्यावरण सुरक्षा के देखते हुए आ सारे देशा दे जो है साफ सफाई भारत अभियान री काफ़ी जरूरत ए इबू भी है रणी भी क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित तो रहना जो आसे सब जो है कूड़ा अपने आसे पासे निशेटूंगे और अपने गली मोहल्ले दे निशेटूंगे। बोलने का मतलब कि पुराने फटे दे प्लास्टिक और जो ऐसे जगह जगह टाले छिटू अपने पुराने तेते पांदे जो है रोक लगानी बहुत जरूरी है। अगर देखा जाओ तो 110 देशा दे री सूची दे भारत की स्थिति इबू भी खराब है क्योंकि ऐसे सब लोग जो है आदते मजबूर है कि जो भी अपने घर आ रहा कूड़ा करकट हुआ से तो या तो बना दा छेटी देना के थी या तो वैसे फूकना नहीं या बिखरा दा रहना से आसे पासे। पर ऐवे लोग बहुत सचेत इस अभियानों के बाद होने लगे रहे। तो लोका साथी इस अभियान दो शामिल होने रहा जो है आह्वान करी कर स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन रूप जो है आज धारण करी चुका। इस अभियानों द्वारा माणू दे स्वच्छता री जगह बनी और किथी ना किथी ए लाभदायक भी होने लगी रही और पूरे देशा दे सवाई रे कामों के जो है सक्रिय रूपा साथे जो है करने भी लगी रहे। इतने ते जो है परेशानियां कम होने लगी रही। वो क्या था कि बस्तिया दे रहने वाले जो लोग है जिन्हें के बेचारे झुकी झोपड़ी है घर भी नहीं है रहने के से वो ज़्यादातर जो है अपने खाने पीने छिलके और कई तरह री जो है सड़े गले चीज़ा अपने आसे पासे छिटी जाओ दे थे और से वो सारी बीमारियाँ के जन्म दे थी। इतरी तक जो है माणू के बीमार कई बारी जो गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ो था जो बुखार है जा वगैरह। पर इते अभियानों के बाद इदे जो है काफ़ी सुधार देखने के मिलने लगी रहा। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी से स्वच्छ भारत अभियानों की शुरुआत करी थी। स्वच्छ भारत मिशन रहते हैं गंगा नदी रे नेड़े 80 घाटा पाँदे ये शुरू हुआ था और बड़ी संख्या दे इस वक्त भी लोग इस साथे जो है जुड़े थे। इदे सरकारी कर्मचारी ते लेकर जवान भी जुड़े और इस कामों दे एनजीओ और स्थानीय सामुदायिक केंद्र भी शामिल हुए और एबे जो है एक आंदोलनारा रूप साथे साथे जो है हर माणू अपना काम समझने लगी रहा और बड़ी संख्या दे जनता जो है आगे आई कर भारत के स्वच्छ बनाने रा प्रण जो है लगी लड़ने लगी। इस अभियानों के बाद जो गली मल्ले री सफाई है झाड़ू लगना कूड़ा करकटा री सफाई पांदे विशेष ध्यान हर माणू ही देने लगी रहा अपने मोहल्ले री सफाई और अपने जेड़ी घर री सफाई के समझो था तेड़ी करने लगी रहा और ज़्यादा अब कागज प्लास्टिक आसे पासे इतने नहीं दिखते जितने कि पहले दिखो थे। अब जनता जो है जागरूक है और होना भी चाहिए अगर आसा जो है अपना देश साफ सुथरा रखना और क्योंकि अगर साफ सुथरा आसारा गली मोहल्ला रहोगा तो आसारा देश भी रहना और आसारा पर्यावरण भी रहना जो कि आसारी तक बहुत ज़्यादा लाभदायक होना और आसारी जो भावी पीढ़ी है से भी सुरक्षित रहनी। तो ये तो थी आसारी गलबात एवे आसे अपने श्रोताओं को सुनाई लिए ए लोकगीत। तो सुनो तुसे ए लोकगीत।

सुखराम और साथी री आवाज़ आदे सुना तुसे ए लोगी तो एबे बात कर लिए जनगणना 2027 री। तो जनगणना 2027 रे पहले चरणारा आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य रे निर्धारित तिथियों रे अनुसार 16 जून 2026 ते 15 जुलाई 2026 तक करा जाना। इतरे ठीक 15 दिन ते पहले हिमाचल वासियों के ए उपलब्ध रहना और निवासी SE.census.gov.in पोर्टला पांदे जे जाइकर अपनी जानकारी भरी सको और जनगणना 2027 रा काम डिजिटल माध्यमता ते करा जाना जिते रे अंतर्गत जो है प्रगणक एवं परीक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन रे माध्यमते सूचनाएं इकट्ठी करी जानी और पहले चरणा दे मकानों की स्थिति परिवारों के उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों ते संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाने और जनगणना रे अधिनियम 1948 रे अंतर्गत जनगणना दी गई और सभी जानकारी गुप्त हो दे और इतरा उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों हेतु ही करा जाना। तो ये तो थी सारी गलबात एबे अपने श्रोता को सुनाई लिए ऐसे खास खास समाचार। तो केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है देश भरा दे बालिकाओं रे सशक्तिकरण रा बड़ा अभियान बनीकर सामने आई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रे अनुसार पिछले 10 साल दे जन्म

समय लिंग अनुपात जो है 918 ते बढ़ी कर 929 हुआ, और माध्यमिक स्तर पांदे छात्रा और नामांकन भी लगभग प्रतिशत तक बढ़ा और ए करीब जो है 80% तक आगे बढ़ना इस योजना दे मुनियारी शिक्षा सुरक्षा और तिना खे आगे बढ़ावा देने री तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी रहा। तो प्रदेशा रे बहुत जगहों दे आज बादल छाए दे रहे और बीते 24 घंटों रे दौरान राज्य रे कई जगहों दे जो है बरखा हुई और जी तेरी वजह ते बहुत ज़्यादा गर्मी ते माणु खे राहत मिली और धर्मशाला दे पिछली रात भर जो है मूसलाधार बरखा हुई। इतरे अलावा रोहतांग समेत प्रदेशा री उच्ची उच्ची पहाड़ियाँ पांदे जो है यूं भी पड़ी। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश दे अलग अलग जगहों पांदे जो है आंधी तूफान और सिलसिला इड़ाई जारी रहना। तो राज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा बोला गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतारी प्राचीन योग और ध्यान परंपरा के विश्व मंचा पांदे जो है स्थापित करने री तक निरंतर प्रयास करे। आज लुधियाने रे स्वामी मेडिटेशन पैरामिडा रे दौरान बोलने लगी रहे थे और आज की जिंदगी दे जो है तनावपूर्ण जीवन शैली दे योग जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने लगी होने भी लगी रहा और ये आने वाले वक्ता दे भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होना। ये तो थी आसारी खास खास खबर। जाते जाते असें अपने श्रोताओं के सुनाई लिए ए लोकगीत तो चुनो तुसे ए लोकगीत।

महास्वी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा करें।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान और बागवान भाई बहनों, आज के सफर में मैं रहूंगा आपके साथ लेखराम शर्मा
1: और मैं जयप्रकाश।
0: तो जयप्रकाश जी, क्या हाल चाल है?
1: मैं ठीक हूँ लेखराम जी, आप सुनाए कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया जय जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहन भी तंदुरुस्त होंगे और अपनी खेतीबाड़ी और बागवानी के कामकाज को सही तरीके से निपटा भी रहे होंगे।
1: जी,
0: तो देखिए, अब गर्मियों का जो मौसम है वो तकरीबन समाप्ति की ओर है और जो वर्षा ऋतु का आगमन है होने वाला है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना है, अपने मवेशी पशुपालन धन का भी ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, जो फसलें आपके खेतों में इन दिनों लगी हैं उसमें समसामयिक काम काज को भी आप समय रहते निपटाएं और आगामी फसलों की भी तैयारियां आप कर दें।
1: तो किसान भाइयों, आज हम काम की बातों के अंतर्गत बात करेंगे धान की किस्मों के बारे में, साथ ही साथ मनोरंजन करेंगे पहाड़ी लोकगीत के साथ, और साथ ही सुनाएंगे जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। शीतोष्ण फलों के बगीचों में परागण किस्मों का महत्व और प्रबंधन।
0: जी बिल्कुल, और चलते चलते जय जी कार्यक्रम के अंत में हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कल कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास उसके बारे में। तो जय जी, जैसा कि आपने किसान भाइयों को कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अवगत करवा दिया, तो आज काम की बातों के तहत हमारा विषय है धान की किस्मों के बारे में। तो देखो जी, धान की फसल लगाने के लिए किसान भाइयों, अब आपको जो पूर्व तैयारियां हैं वो करनी बहुत जरूरी हो जाती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है किस्मों का। देखो जय जी, अगर हमारे किसान भाइयों के पास धान के लिए उचित प्रजाति वाली किस्में हैं तो उससे क्या होगा, या जो महकमा जिन किस्मों की सिफारिश करता है वो किस्में ही अगर हमारे किसान भाई लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि हमारे किसान भाइयों को एक तो देखो जी फसल भी बढ़िया हासिल होगी
1: जी,
0: और उसमें काम करने का भी मजा आएगा, आमदनी भी अच्छी होगी
1: जी,
0: और रोग और कीटों से भी हमारी फसल हद तक बची रहेगी
1: जी।
0: तो किसान भाइयों, धान की फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों की बात सबसे पहले आती है। तो वो जो उन्नत किस्में होती है वो कौन कौन सी होती है, आप कौन कौन सी किस्में ले सकते हैं, उसके बारे में आपको कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी दे देते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, अनुमोदित किस्मों की अगर बात करें तो VL धान 221, ये एक मध्यम लंबाई, जल्दी पकने और अधिक उपज देने वाली किस्म मानी जाती है।
0: अच्छा जी।
1: और ये असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म होती है,
0: यानी जहाँ पर हमारे किसान भाइयों के पास पानी की अधिक व्यवस्था नहीं है
1: जी,
0: वहाँ पर हमारे किसान भाई, यानी ये जो आपने किस्म बताई VL धान 221 किस्म, ये लगाने के लिए बहुत बढ़िया है
1: जी।
0: और जी,
1: और इसके अलावा सुकारा धान की अगर बात करें तो HPR 1156, ये एक मध्यम ऊंचाई वाली किस्म मानी जाती है और ये जल्दी तैयार होने वाली किस्म 110 से 120 दिनों में तैयार होती है।
0: अच्छा जी।
1: इस किस्म के पौधे सीधे, मध्यम बालियां, दाने लंबे पतले और बिना बालों के होते हैं। बारानी परिस्थितियों में औसत उपज 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। एक किस्म ब्लास्ट झुलसा, जीवाणु झुलसा और बदरंगा रोग के प्रति प्रतिरोधी है, कीटों से भी इस किस्म में ज्यादा क्षति नहीं होती है।
0: बिल्कुल जी। तो देखिए किसान भाइयों, ये जो सुकारा धान एक किस्म है, यानी जिसे आप HPR 1156 के नाम से भी जानते हैं
1: जी,
0: तो रोग और कीटों से बचाव के लिए ये फसल बहुत बढ़िया मानी जाती है
1: जी।
0: तो इस किस्म को आप किसान भाइयों लगा सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, ये जो किस्म रहती है ये बारानी परिस्थितियों में सीधी बिजाई और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए उगाने की इसकी सिफारिश की जाती है
1: जी।
0: किसान भाई, उसके साथ साथ ये किस्म रोपाई की परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। बिल्कुल जी। और अब बात आती है जय जी, जो हमारे किसान भाइयों के पास जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, उसके लिए जो किस्में हैं महकमा जिन किस्मों की सिफारिश करता है वो भी किसान भाइयों को बता देते हैं। देखिए किसान भाइयों, HPR 2143 जो किस्म है ये एक मध्यम ऊंचाई की किस्म है, यानी 87 से 105 सेंटीमीटर लंबी और 125 से 135 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म होती है। झुलसा रोग प्रतिरोधी

0: की किस्म है और इसे सिंचित बिजाई के लिए मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके साथ साथ किसान भाई इस किस्म के फायदे ये भी हैं, लुंग विधि से बिजाई के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान भी रखें। इसकी बालियां लंबी होती है और अधिक दानों वाली होती है। यद्यपि किसान भाइयों इस किस्म में लगभग 17% दाने खाली होते हैं, दाने लंबे पतले होते हैं और इसकी जो उपज की अगर आप बात सोच रहे होंगे 38.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा जय जी HPR 1068 किस्म की अगर बात करें तो इसके बारे में भी आप किसान भाइयों को थोड़ा सा बता दें।
1: किसान भाइयों HPR 1068 की अगर बात करें तो ये किस्म भी मध्यम पहाड़ी इलाकों के सिंचित क्षेत्रों के लिए अनुमोदित की गई है।
0: अच्छा जी,
1: ये मध्यम लंबाई की जल्दी पकने वाली 120 से 125 दिनों में ये किस्म तैयार हो जाती है। इसकी बालियां लंबी 23.6 सेंटीमीटर, दाने लंबे और मोटे होते हैं।
0: अच्छा जी।
1: जिनका प्रति 1000 दानों का भार जो है 30 ग्राम होता है। ये एक ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्म है जिसकी औसत पैदावार 44.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है।
0: अच्छा जी, और किसान भाइयों अगर बात करें RP 2421 किस्म की तो किसान भाइयों ये मध्यम लंबाई जल्दी पकने वाली और अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसे रुपाई और सिंचित परिस्थितियों के लिए अनुमोदित किया गया है। किसान भाइयों इसके साथ साथ ये किस्म 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके दाने मध्यम और मोटे होते हैं। ये धान की मुख्य बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधी किस्म भी मानी जाती है। और जय जी अगर हम इससे उत्पादन की अगर बात करें तो इससे हमारे किसान भाई 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी, और अब बात करते हैं किसान भाइयों एराइज 6129 यानी कि HRI 152, ये निजी क्षेत्र द्वारा विकसित धान की वर्ण संकर किस्म है जिसे प्रदेश के निचले और 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले मध्यवर्ती क्षेत्रों के सिंचित इलाकों के लिए अनुमोदित किया गया है।
0: अच्छा जी,
1: इस किस्म के दाने मध्यम लंबे और पतले होते और ये लगभग 135 से 138 दिनों में तैयार होने वाली किस्म मानी जाती है। ये झुलसा रोग प्रतिरोधी है लेकिन इसमें आभासी कांगियारी का प्रकोप होता है। इसकी औसत उपज 50 से 54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग होती है।
0: बहुत बढ़िया जी, और जय जी इसके साथ अगर हम बात करें ऊंचे क्षेत्रों की यानी 1300 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो किसान भाइयों इसके लिए सिफारिश किस्म है वो है वरुण धान। तो किसान भाइयों इस किस्म का अनुमोदन सिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुल्लू मंडी और शिमला के क्षेत्रों के लिए किया गया है। ये किस्म मध्यम बोनी किस्म होती है, जल्दी पकने वाली किस्म होती है यानी लगभग 140 से 145 दिनों में ये किस्म तैयार हो जाती है और खेत में धान की मुख्य बीमारियों के लिए प्रतिरोधी किस्म को माना गया है। इस किस्म में ठंड सहने की क्षमता होती है और ये नोरिन 18 और नग्गर धान का विकल्प होता है। किसान भाई उसके साथ साथ सिंचित क्षेत्रों में इसकी औसत पैदावार 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग आप ले सकते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो उसके लिए एक और भी जो प्रजाति है किसान भाइयों भृगु धान। इस किस्म का 1400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सिंचित क्षेत्रों के लिए विशेषकर कुल्लू की घाटी वाले ऐसे क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है और ये शीघ्र तैयार होने वाली बोनी किस्म होती है जो ठंड को सहन कर सकती है और इसके दाने छोटे होते हैं, मोटे और चावल लाल रंग के होते हैं। सामान्य खाद देने पर ये किस्म गिरती नहीं है और दाने भी इसमें नहीं झड़ते हैं। किसान भाइयों ये किस्म ब्लास्ट, भूरा धब्बा, तुष धब्बा, पर्ण छद बीमारियां और तना छेद और जो पत्ता लपेट कीट लग जाता है उसके लिए ये किस्म प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। इसकी औसत उपज की अगर बात करें तो 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग आप इससे उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी किसान भाइयों मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगर बात करें तो HKR 126 इसे निचले क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है। ये मध्यम लंबाई 95 से 98 सेंटीमीटर वाली किस्म है जिसमें अधिक दौजियां निकलती है। ये किस्म गिरती नहीं है, इसके दाने लंबे पतले है और 135 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है।
0: बिल्कुल जी,
1: ये झुलसा और तना सड़न के लिए माध्यमिक प्रतिरोधी है। इसकी उपज 39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग होती है।
0: बिल्कुल,
1: बात कर लेते हैं PR 108, 109, 113, 116, 118 और जया के बारे में। तो इन किस्मों को नालागढ़ और ऊना जिलों के लिए अनुमोदित किया गया है लेकिन धौलाकुआं और नूरपुर क्षेत्रों के लिए जहां भूरा धब्बा बीमारी का अधिक प्रकोप है PR 108 और PR 109 उपयुक्त किस्म नहीं है, इसलिए वहां के लिए जया किस्म का अनुमोदन

0: किया गया है।
1: बिल्कुल जी। तो देखिए जय जी, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को खास तौर पर ध्यान रखनी होती है।
0: जी
1: जैसे कि किस्में ले रहे हैं, तो किस्मों का जो चुनाव है हमारे किसान भाई क्षेत्र विशेष के अनुसार ही कर सकते हैं।
0: जी
1: जो सिफारिशें किसान भाइयों हमने बताई ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए, तो वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के जो किसान हैं वो उन अनुमोदित किस्मों को ही लगाएं। मैदानी वाले क्षेत्रों में हमारे किसान भाई, मैदानी क्षेत्रों के लिए जो किस्में सिफारिश की गई हैं उन किस्मों का ही चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
0: जी
1: तो खास बातें हैं जो हमने किसान भाइयों को अपने ये जो धान की अगर काश्त करना चाहते हैं तो उसमें जो किस्मों के बारे में ध्यान में रखनी है उसके बारे में हमने किसान भाइयों को काम की बातों के तहत कार्यक्रम में जानकारी दी। देखिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। तो जय जी, कार्यक्रम में आगे आपका क्या विचार है?
0: किसान भाइयों, अब मनोरंजन कर लेते हैं पहाड़ी लोकगीत के साथ। तो आइए सुनते हैं परस राम तोमर की आवाज में ये लोकगीत।
1: जी

0: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे परशुराम तोमर की आवाज में ये लोकगीत। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में जानकारी पूर्ण बातचीत का, और इस जानकारी पूर्ण बातचीत को हम आप तक लेकर आते हैं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं शीतोष्ण फलों के बागीचों में परागण किस्मों का महत्व एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, डॉक्टर गोपाल सिंह से जानकारी हासिल कर रहे हैं दिनेश। तो आइए सुनते हैं किसान भाइयों कार्यक्रम में इस जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर गोपाल सिंह जी। डॉक्टर गोपाल सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।
1: डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है शीतोष्ण फलों के बागीचों में परागण किस्मों के महत्व एवं प्रबंधन के बारे में।
2: जी,
1: तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परागण क्या होता है।
2: फूल के नर भाग से निकले पराग कणों के मादा भाग पर स्थानांतरण को परागण कहते हैं।
1: जी,
2: यौन निषेचन व फ्रूट सेट के लिए पहली क्रिया होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, शीतोष्ण फल पौधों में परागण कितने प्रकार से होता है?
2: शीतोष्ण फल पौधों में परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक स्वयं परागण तथा दूसरा परपरागण, यानी कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वयं परागण और पर परागण क्या होता है।
2: जब एक ही फूल के नर व मादा भाग परागण व निषेचन करे तो वो स्वयं परागण कहलाता है। इसके अतिरिक्त जब दूसरी किस्मों के फूलों के नर भाग से परागण हो तो उसे पर परागण कहा जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को ये भी बताएं कि शीतोष्ण फलों के बागीचों में परागण किस्में क्या होती है, और इन किस्मों का व्यावसायिक फलों उत्पादन में क्या महत्व रहता है।
2: व्यावसायिक तौर पर लगाई जाने वाली शीतोष्ण फलों की अधिकतर किस्मों में फल पर परागण द्वारा ही बनता है, यानी कि इन किस्मों में फ्रूट सेट मुख्यतः क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा होता है, जिसके लिए परागण हेतु पराग कण किसी अन्य वेराइटी के फूलों से आने चाहिए, जिन्हें की परागण किस्में या पॉलिनाइजर वैरायटी भी कहा जाता है। इन पॉलिनाइजर किस्मों का व्यावसायिक फल उत्पादन के लिए फलों की स्थापना यानी कि फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जो परागण किस्में आपने बताई, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परागण किस्में पॉलिनाइजर वैरायटी की क्या विशेषताएं होती है।
2: परागणकर्ता किस्में यानी कि पॉलिनाइजर वैरायटीज के पराग कण में मुख्य किस्मों के फूलों को निषेचन करने की क्षमता होनी चाहिए। इन किस्मों के फूल खिलने का समय भी मुख्य व्यावसायिक किस्मों के फूलों के खिलने के साथ ही मिलना चाहिए, यानी कि इन दोनों प्रकार की किस्मों में फूल एक ही समय में खिलने चाहिए। फूल प्रतिवर्ष निरंतर लगते रहने चाहिए एवं पराग कण बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त परागणकर्ता किस्मों की उत्पादन क्षमता व फलों की गुणवत्ता भी उत्तम होनी चाहिए।
1: जी तो डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण फलों के व्यावसायिक फलों उत्पादन में सेब की एक विशेष भूमिका रहती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सेब में परागण किस प्रकार से होता है, और इसमें परागण किस्मों पर क्यों विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
2: जी, सेब की मुख्य व्यावसायिक किस्मों में फल पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा लगते हैं। प्रदेश में डिलीशियस प्रजातियां अधिक उगाई जाती है तथा इन डिलीशियस किस्मों में स्वयं अनुपादिता और मादा के बांझपन यानी कि स्टेरिलिटी के कारण फल उत्पादन कम होता है, इसलिए इसमें परागण किस्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, सेब बागीचों में परागण कर्ता जो है उसमें किस्में कितनी होनी चाहिए, और उनको लगाने की क्या व्यवस्था हमारे बागवान भाइयों को करनी चाहिए।
2: सेब के बागीचों में परागणकर्ता किस्में यानी कि पॉलिनाइजर किस्मों का अनुपात 25-33% होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओलावृष्टि से अधिक प्रभावित होने वाले बागीचों में 50% के अनुपात में परागणकर्ता यानी कि पॉलिनाइजर किस्मों को लगाना चाहिए। 25% परागणकर्ता किस्मों की व्यवस्था के लिए बागवान भाइयों को प्रति

0: एक दूसरी पंक्ति में दूसरा परागणकर्ता किस्म का पौधा लगाना चाहिए, जबकि 33% परागणकर्ता किस्मों के लिए बागवान भाई अपने बगीचों में प्रत्येक तीसरी पंक्ति में परागण किस्मों को लगाएं। इसके अतिरिक्त बागवान भाइयों को अपने बागीचों में 2 से 3 परागणकर्ता किस्मों की आवश्यकता रहती है, जिन्हें की अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि बागवान कई बार सिर्फ एक ही परागणकर्ता किस्म जैसे कि गोल्डन डिलिशियस को लगाते हैं, जो कि कई बार मुख्य किस्मों में फूल आने के बाद खिलती है, जिससे कि पॉलिनेशन यानी कि परागण प्रक्रिया बाधित रहती है और परागण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और फ्रूट सेटिंग में भी कमी होती है। इसलिए बागवान भाइयों को अपने बगीचों में अनुमोदित की गई 2 से 3 परागणकर्ता प्रजातियों को लगाना आवश्यक होता है।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सेब की अनुमोदित परागण किस्में कौन कौन सी होती है।
0: जी, सेब की अनुमोदित परागणकर्ता किस्में यानी कि पॉलिनाइजर वेराइटीज मुख्यतः रूप से गोल्डन डिलिशियस, रेड गोल्ड, टाइडमैन अर्ली वर्सिस्टर, गोल्डन स्पर, ग्रैनी स्मिथ, गाला ग्रुप की किस्में जैसे कि गेल गाला, रेडलम गाला, डार्क बैरोन गाला, शिनिको गाला, शिनिगा शिनिको गाला तथा फ्यूजी ग्रुप की ओबिलर्ली फ्यूजी, सन फ्यूजी तथा फ्यूजी इत्यादि किस्मों को लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रैब सेब की किस्में जैसे कि मैंचूरियन, रेड फ्लश, गोल्डन हॉर्नेट और स्नो ड्रिफ्ट इत्यादि किस्मों को भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे बागवान भाई जब इन क्रैब किस्मों को लगाते हैं तो ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती रहती है कि इन किस्मों में फल अच्छी प्रकार के और अच्छी गुणवत्ता के नहीं आते। इनमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और उनमें फूल खिलने का समय भी बहुत अधिक रहता है, जिससे कि ये अच्छे परागण के लिए सहायक होती है।
1: जी,
0: आज के समय में गाला किस्मों के फल बाजार में बड़े अच्छे दामों पे बिक रहे हैं, इसलिए बागवान भाइयों को ये सिफारिश की जाती है कि वो अपने बगीचों में इस गाला ग्रुप की 2 से 3 प्रजातियों को पॉलिनाइजिंग वैरायटी के रूप में लगाएं।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिन पुराने पहले लगे हुए सेब के बागीचों में परागण किस्मों का अनुपात या तो बहुत कम है या ना के बराबर है, तो हमारे किसान बागवान भाई बहन किस प्रकार इन बागीचों में परागण व्यवस्था करें?
0: जी हाँ, जहाँ पर अनुमोदित की गई मात्रा से परागण किस्में कम लगाई गई है या किसी कारणवश हमारे बागवान भाई इन्हें लगा नहीं पाए, वो अपनी लगाई हुई मुख्य किस्मों के पौधों की 2 से 3 ऊपरी भाग वाली शाखाओं में अनुमोदित की गई परागणकर्ता किस्मों का शिखरोपण यानी कि टॉप वर्किंग अवश्य करें। इससे भी 2 या 3 वर्षों के पश्चात परागण किस्मों की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परागण किस्मों के फूलों की गुलदस्तों को भी फूल खिलने के समय मुख्य किस्म के फल पौधों पर अवश्य लगाएं। इसके लिए परागण किस्मों की टानियों को फूल खिलने की बैलून स्टेज यानी कि गुब्बारे जैसी अवस्था में काटकर पानी से भरे हुए डिब्बे, बोतलों और पॉलीथीन की थैलियों में रखकर उस मुख्य किस्म के पेड़ पर कई स्थानों पर लगा देना चाहिए और जब फूल मुरझाने लगे तो इसे बदलकर लगा देना चाहिए। इससे तुरंत परागण की समस्या को सुधारा जा सकता है, लेकिन इसकी एक ये समस्या रहती है कि हमें ये फूलों के गुलदस्ते, पॉलिनाइजिंग वैरायटी के फूलों के गुलदस्ते हर वर्ष इसी प्रकार लगाने की आवश्यकता होती है और हर बार लगाने पड़ते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, साथ ही अगर हम बात करें इसके अलावा जो हमारे प्रदेश में नाशपाती, गुठलीदार फल, अखरोट और कीवी फल भी उगाए जा रहे हैं, इनमें किस प्रकार से हमारे किसान और बागवान भाई बहन जो है वो परागण का प्रबंधन कर सकते हैं?
0: जी, नाशपाती की फ्लेमिश ब्यूटी, कॉन्फ्रेंस तथा कीफर परागणकर्ता किस्में है। इसके अतिरिक्त स्वयं असंगत यानी कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबल किस्में जिनकी की 2 किस्मों में या 2 वेराइटीज में फूल खिलने का समय एक समान होता है या एक ही समय में 2 वेराइटी में फूल खिलता हो, वो आराम से एक से दूसरी प्रजाति को आसानी से पॉलिनेट कर सकती है।
1: जी,
0: प्लम की सांता रोजा प्रजाति भी स्वयं परागण में सक्षम है, यद्यपि अधिक उत्पादन के लिए प्लम की ब्यूटी किस्म को भी अन्य व्यावसायिक किस्मों के साथ लगाना चाहिए। जहाँ तक हम बादाम की बात करें तो बादाम की नॉन पेरिल किस्म के लिए ड्रैक प्रजाति परागणकर्ता के रूप में तथा अन्य किस्मों में नी प्लस अल्ट्रा तथा ड्रैक दोनों ही किस्मों को परागण के लिए लगाना चाहिए या लगाई जा सकती है।
1: जी,
0: यदि हम चेरी की बात करें, चेरी की स्टेला किस्मों में स्वयं परागण की क्षमता होती है तथा इस किस्म को बाकी किस्मों के बीच लगाने की सिफारिश की जाती है। चेरी की अन्य सार्वभौमिक परागण किस्में जैसे कि लेपिन, सकीना, स्वीट हार्ट, स्टेला, सनब्रेस्ट को अच्छे फल प्राप्त करने के लिए

0: किसी भी किस्मों के साथ लगाया जाना चाहिए। उचित परागण के लिए बगीचों में 2 से 3 किस्मों को लगाया जाना चाहिए तथा पौधरोपण इस तरह से किया जाना चाहिए कि रोपण व्यवस्था में एक किस्म के पौधे दूसरी किस्म के समान लगे हो।
1: जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अखरोट और कीवी के बारे में, तो इसमें आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, हमारे प्रदेश में अखरोट और कीवी के फल उत्पादन की काफी अच्छी संभावना है।
1: जी,
0: जहाँ तक हम अखरोट की बात करें, अखरोट में नर और मादा दोनों तरह के फूल अलग अलग स्थानों पर परंतु एक ही पेड़ पर लगते हैं, लेकिन कुछ किस्मों में फूल के भिन्न भिन्न समय में परिपक्वता के कारण इनकी 2 या अधिक प्रजातियां आसपास लगानी चाहिए, जिससे कि अधिक मात्रा में उत्तम गुणवत्ता वाले फल प्राप्त हो सके। जहां तक आपने कीवी फल की बात की, कीवी फल में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, इसलिए फल उत्पादन हेतु दोनों तरह के पौधों को लगाना आवश्यक होता है। एलिसन या तैमोरी नर पौधे परागण के लिए लगाने चाहिए, इनकी आवश्यकता रहती है। 9 मादा पौधों के साथ एक नर पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर गोपाल सिंह ने हमें जानकारी दी शीतोष्ण फलों के बागीचों में परागण किस्मों के महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और आज आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुना जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। शीतोष्ण फलों के बागीचों में परागण किस्मों का महत्व और प्रबंधन, बातचीत में गोपाल सिंह से बातचीत कर रहे थे दिनेश
3: जी। तो किसान भाइयों, अब आपको कार्यक्रम में इंतजार होगा एक और लोकगीत का, तो आइए मिलजुल कर सुनते हैं तारावती की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना तारावती की आवाज में ये लोक गीत।
1: तो किसान भाइयों, अब चलते चलते कार्यक्रम के अंत में आपको जानकारी दे देते हैं कल कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास उसके बारे में। किसान भाइयों, कल काम की बातों के तहत हम आपको जानकारी देंगे पोषक तत्वों के प्रयोग में सावधानियां। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लोकगीत भी आपको सुनाए जाएंगे और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा गुठलीदार फल बागीचों के बारे में जानकारी। तो किसान भाइयों, ये था आज का कृषि जगत कार्यक्रम। इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न होता है। हमें दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

अभी आप सुन रहे थे 103.7 MHz FM शिमला पर कृषि जगत कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आप हमारा प्रसारण एफएम शिमला पर भी सुन रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आरोप, विकास और सुशासन दोनों ही मोर्चों पर विफल रही प्रदेश सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा हिमाचल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के अनुसार, भारत की प्राचीन योग व ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के प्रयास जारी। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार विकास और सुशासन दोनों मोर्चों पर विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों पर आज शिमला में आयोजित मीडिया संवाद में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। नड्डा ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश को 360 करोड़ रुपये की राशि मिली थी, लेकिन राज्य सरकार इस राशि का सही प्रयोग नहीं कर पाई है।
6: 2021-22 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम में इनको हमने 360 करोड़ रुपए दिए हेल्थ के लिए। 15 क्रिटिकल ब्लॉक बनने थे, एक भी क्रिटिकल केयर यूनिट हिमाचल प्रदेश में नहीं बना। 12 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इनको बनाने के लिए हमने को पैसा दिया, अभी तक एक भी लैब बन करके तैयार नहीं हुई। उसी तरीके से 73 प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स के ब्लॉक्स बनने थे, अभी तक एक भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है।
5: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं व वित्तीय सहायता की भी जानकारी दी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
7: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, उर्वरक और रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को एडहॉक की सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश में ट्रेजरी भी व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से चल रही है।
6: ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, DGP एडिशनल चार्ज पर है, वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है, ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है।

0: करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है, कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं, इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है।
1: प्रदेश में संचालित की जा रही जायका परियोजना का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि ये योजना भारत सरकार के सहयोग और सहमति के बाद जापान से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नीति के तहत चलाई जा रही है।
0: ये बार बार चर्चा करते हैं कि हमको जायका मिला और जापान को धन्यवाद देते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 22 मई 2025 को हमारे मुख्यमंत्री मुझसे मिलने दिल्ली आए थे और उन्होंने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से चर्चा की थी और 30 जून 2025 को प्लान अप्रूव कराया और भारत सरकार की सहमति से जायका का 1,422 करोड़ रुपए मिला है। इसलिए यहां जो ये दिखाते हैं कि मैं जापान से लाया, ये जापान से नहीं लाया, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जो जापान और भारत के बीच में करार है और 90% का ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मोदी जी की सरकार ने दिया है।
1: केंद्र द्वारा प्रदेश को दी जा रही आर्थिक सहायता की चर्चा करते हुए नड्डा ने कहा,
0: 2024-25 के साल में 2,381 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के रूप में भारत सरकार ने हिमाचल को दिया है। उसी तरीके से 2024-25 में ही NDRF से पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2006 करोड़ रुपए अलग से दिए गए और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में 2,150 करोड़ रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है।
1: केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10,339 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
0: इलेक्ट्रिसिटी में सूर्य घर योजना में बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत छोटी अवधि में 10,339 घरों के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स लग चुके हैं। सब्सिडी 74 करोड़ 73 लाख की सब्सिडी दी जा चुकी है।
1: प्रदेश में 4-लेन परियोजनाओं और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इन परियोजनाओं पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
0: आज नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है। 4-लेनिंग में हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपीज स्पेंड हुए हैं और 668 किलोमीटर 4 लेन्स बनी है। इम्पोर्टेंट मेजर कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है, कीरतपुर से लेकर के मनाली तक, शिमला से लेकर के धर्मशाला तक, पठानकोट से मंडी, शिमला से मटौर, पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, परवानू, सोलन, शिमला, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 4-लेन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और हिमाचल की जनता को कनेक्टिविटी मिलने के लिए मुख्य रूप से काम हुआ है।
1: राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध परियोजना की जानकारी देते हुए नड्डा ने कहा कि इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा रेल नेटवर्क के विकास पर राज्य में 2,911 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
0: रेणुका डैम को नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और 7,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हो चुके हैं। हमारे लूरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 1,800 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और काम चल रहा है।
1: मीडिया संवाद से पहले केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित स्वच्छता अभियान में शिरकत की। बाद में उन्होंने शोघी में पौधरोपण भी किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को गुमराह करने वाला करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली विशेष आर्थिक मदद और RDG बंद कर प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया है। विनय कुमार ने कहा कि GST के नए स्लैब से प्रदेश को पिछले कुछ वर्षों में करीब 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी केंद्रीय मंत्री के दौरे को निराशाजनक बताया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में प्रदेश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। शिमला में आज मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का आधार लगातार मजबूत हुआ है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन

0: इन योग और ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वे आज लुधियाना में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के दौरे के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग और ध्यान न केवल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि संतुलित, सकारात्मक और सार्थक जीवन जीने के लिए भी अत्यंत प्रभावी साधन है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। राज्य में कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात भी हुआ है। मौसम के इस बदले मिजाज का आनंद लेने और मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर की छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांगड़ा जिला में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के इंडोर स्टेडियम कल्याड़ा में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आज शुरू हुई। इसका शुभारंभ विधायक व प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आरोप, विकास और सुशासन दोनों ही मोर्चों पर विफल रही प्रदेश सरकार। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा हिमाचल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के अनुसार, भारत की प्राचीन योग व ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के प्रयास जारी। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: देशगान अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत, और आज के सफर में विवेक शर्मा आपके साथ।

जी आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत हिंदी सिनेमा के वे सुनहरे सदाबहार और क्लासिक गाने हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन जब इन्हें हम सुनते हैं तो पुरानी यादें, पुराना संगीत फिर से जीवंत हो उठता है। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर फिल्म है अलबेला। आवाजें हैं लता मंगेशकर और चितलकर और साथियों की, बोल है राजेंद्र किशन के और संगीत श्रीराम चंद्र का।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर भूले बिसरे गीत। अभी आपने सुना लता मंगेशकर को और साथियों को। लता मंगेशकर की आवाज अत्यंत सुरीली और कोमल थी, जिसमें हर शब्द का उच्चारण एकदम स्पष्ट होता था। लता मंगेशकर गानों की भावनाओं को बखूबी समझती थी और अपनी आवाज के माध्यम से सबका मन मोह लेती थी।

लता मंगेशकर को। और साथियों को, लता मंगेशकर की आवाज अत्यंत सुरीली और कोमल थी, जिसमें हर शब्द का उच्चारण एकदम स्पष्ट होता था। लता मंगेशकर गानों की भावनाओं को बखूबी समझती थी और अपनी आवाज के माध्यम से सबका मन मोह लेती थी। अगला गीत आपकी नजर फिल्म है मल्हार। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं इंडीवर के और संगीत रोशन का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 MHz FM शिमला पर।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत पुराने दौर के सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक हैं और पुरानी यादों की सुखद यात्रा में खो जाते हैं हम जब इन्हें सुनते हैं। भूले बिसरे गीत जिन्हें हम भूल चुके हैं, अनसुने पुराने लेकिन मधुर गानों का खजाना है।

0: अभी आपने सुना फिल्म सगाई का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की और राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और संगीत सी राम चंद्रा का।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत केवल गाने नहीं हैं, बल्कि एक युग की यादें हैं जो इस तेज दौड़ भाग वाली जिंदगी में हमें सुकून पहुंचाते हैं। ये गीत, इससे पहले आपने सुना था फिल्म सगाई का गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाहर से, आवाज है शमशाद बेगम की, बोल हैं राजेंद्र किशन के और संगीत एस टी बर्मन का।

भूले बिसरे गीतों की सादगी, इन गीतों का मधुर संगीत और इन गीतों की आवाज जिसमें छिपे हैं कई राज। जी, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है बैजू बावरा, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का।

0: आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ऐ दिल को
1: अच्छा
0: एक नजर में हार चुके हैं, दिल को तेरी अदा पे वार चुके हैं, दिल को अजी मुश्किल।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अभी आपने सुना फिल्म पतिता का गीत, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, साहिल के बोलते और एसटी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म जाल का गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, बोल हैं हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: यही है पीढ़ियों की पहचान।
1: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

जी ये है एफएम शिमला का अंदाज और एफएम शिमला की आवाज खास आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है एक दूजे के लिए। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला पर। फिल्म संगीत सुन रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म लावारिस का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, अनजान के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। लीजिए सुनिए समाचार संध्या और उसके उपरांत न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, दिल्ली केंद्र से
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस

0: नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य

0: देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और

0: यह तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia.

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं एक फिल्म से, और आज के सफर में विवेक शर्मा हैं आपके साथ। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे फिल्म कर्ज की। यह एक क्लासिक हिंदी फिल्म है और ये फिल्म रिलीज हुई 1980 में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। इस फिल्म में मुख्य कलाकार ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी गरेवाल, राज किरण हैं, और सहायक भूमिकाओं में प्राण, प्रेमनाथ, दुर्गा खोटे शामिल है। फिल्म के गाने और सस्पेंस इसके मुख्य आकर्षण हैं। ये फिल्म पुनर्जन्म, विश्वासघात और बदले की कहानी पर आधारित है।

फिल्म कर्ज में रवि वर्मा नाम के एक अमीर व्यक्ति की शादी के तुरंत बाद उसकी पत्नी कामनी द्वारा हत्या कर दी जाती है और सालों बाद मोंटी के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है।

आप सुन रहे हैं एक फिल्म से और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कर्ज की। जो आपको बताना चाहेंगे कि रवि वर्मा अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति और व्यापार का वारिस बनता है और कामनी नामक एक सुंदर लड़की रवि को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेती है। शादी के तुरंत बाद वह रवि को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक सुनसान जगह पर ले जाती है और काली मंदिर के पास चट्टान से धक्का देकर मारती है। रवि की आत्मा न्याय मांगती है और सालों बाद उसका पुनर्जन्म एक अनाथ और संगीतकार पॉप सिंगर मोंटी के रूप में होता है। मोंटी को अपनी छुट्टियों के दौरान ऊटी में अचानक अपने पिछले जन्म की यादें आनी शुरू हो जाती है और उसे याद आता है कि उसकी हत्या कैसे हुई थी।

0: Esto.
1: आप सुन रहे हैं एक फिल्म से और बात कर रहे हैं फिल्म कर्ज की। इस फिल्म की स्टार्टिंग जो है पैसों के चक्कर में होती है और जब एंड होता है तो आपको बताना चाहेंगे कि ऊटी में मोंटी अपनी पिछली जिंदगी

के परिवार अपनी माँ और अपनी बहन से मिलता है और उसे पता चलता है कि वही हत्यारी पत्नी कामिनी अब रानी साहिबा के रूप में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। मोंटी टीना की मदद से कामिनी के खिलाफ जाल बुनता है और अंत में एक बार फिर काली मंदिर के पास कामिनी को अपने ही करतूतों का सच पता चलता है और वह उसे चट्टान से वहाँ पर चट्टान से गिरकर जो है मर जाती है, मारी जाती है।

इस फिल्म के गाने इतने शानदार और इतने सुनने के लिए जो है आनंद आता है इन गानों को, गाने इतने शानदार है कि आज की जनरेशन भी इसे जो है पसंद करती है। पैसा ओ पैसा किशोर कुमार की ऊर्जा से भरा ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। दर्दे दिल दर्दे जिगर मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया ये गीत बहुत ही भावुक और प्यारा रोमांटिक गाना है। ये हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन रहस्यमय और रोमांटिक गानों में से एक है। किशोर कुमार और आशा भोंसले की जुगलबंदी में इस फिल्म के गानों में चार चांद लगाए हैं। जी, फिल्म का ये आइकॉनिक ट्रैक डिस्को बीट्स के लिए जाना जाता है। इस पर ऋषि कपूर का डांस और गिटार बजाने का अंदाज लोगों को आज भी परफेक्ट लगता है।

दिल की आवाज भी सुन। जी बेसब्री से इंतजार है आपकी ईमेल्स का, और हमारे ईमेल का जो पता है AIRFMShimla@gmail.com। और जो हमने मूवीज़ आपके लिए चूज़ की है वो है परदेस, इश्क, अनाड़ी, कुछ कुछ होता है और मेजर साहब। तो बेसब्री से इंतज़ार है आपकी ईमेल्स का, जुड़ जाइए FM शिमला के साथ।

और आपका जो ये प्यार है जो हमेशा आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला के साथ बना रहता है, तो ये आपकी मेल जब आती है उससे झलक जाता है। तो आज की पहली मेल, मेल करने वाले हैं हमें नमस्कार कहते हैं और अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें। राज पैलेस मौनात भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आयरन वर्मा, और इसी के साथ शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आयरन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं बिल्कुल आपको सुनवाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है वो मेल है कनेरा मोहाली पटियाला से मुकेश बतलानी, नीलम बतलानी और हरिका और हरदित्यवंश भट जो ये फ़ोन जो मेल भेज रहे हैं, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा, आपको हम गीत सुनवाएंगे। इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है आदर्श नगर मॉल आउट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, सौरभ शर्मा, शैना शर्मा, मध्य शर्मा और मांडे शर्मा, ये जो है मैसेज कर रहे हैं और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। इसी बीच मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ये मैसेज कर रहे हैं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो आपका तहदिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एफएम शिमला पर, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा आपको गीत सुनाते हैं। इसी बीच प्रसारक जी सेवा में प्रणाम, हमारी तरफ से भी आपको प्रणाम, और ये मैसेज कर रहे हैं मेल भेज रहे हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो सदानंद जी थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा आपको सुनवाते हैं। इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है, अगली मेल हमारे पास आई है राधे राधे नमस्कार, हमारे तरफ से भी आपको राधे राधे नमस्कार, ये है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली ज़िला मुरादाबाद से ये मेल भेज रहे हैं, और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा सुनवाते हैं, तब तक आपकी मेल्स शामिल कर लेते हैं क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कोई मेल ऐसी ना हो कि जो हमारे से छूट जाए, हम आपकी मेल्स को शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी बीच ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ये फिल्म कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। और इसी बीच अगली जो हमारे पास मेल आई है वो मेल है सोनू की, मोनू की, पिंकू की और रिंकू की, ये मेल भेज रहे हैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से जी, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, कोई भी गीत सुनना चाहते हैं ये भी तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, हम आपको सुनवाएंगे। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, स्वागत है आपका तहदिल से एफएम शिमला पर। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है जसबीर सिंह की, जो गांव डाकघर निगनाबाद ज़िला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा आपको सुनवाते हैं।

इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है वो मेल है संजय की, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। आप सोलन से मैसेज कर रहे हैं तो आपको इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म है अनाड़ी, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, समीर के बोल हैं और आनंद मिलंद का संगीत।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है दिल की आवाज़ भी सुन, ईमेल बेस्ड प्रोग्राम। अगली जो मेल हमारे पास आई है वो है रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, निशा और जालंधर से देवशंकर जटोलिया, ये सुनना चाहते हैं इश्क मूवी का गीत। बिल्कुल थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है वो मेल हमारे पास आई है रमन की, संदीप की और रजनी की। ये मेल भेज रहे हैं अर्की से, अर्की से मेल भेज रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा अर्की आपने ठीक नहीं लिखा है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है एफएम शिमला पर और आप कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, गुजरात से प्रवीणा, प्रवीण सोनी और लाला सोनी। फिल्म कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं किसी फिल्म का, तो आपका तहे दिल से स्वागत है एफएम शिमला पर। इसी बीच गोविंदपुरा सिक्कर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, आपका स्वागत है एफएम शिमला पर। और नेक्स्ट मेल हमारे पास आई है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की। ये मेल भेज रहे हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, तो आपका भी स्वागत है एफएम शिमला पर। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है, ये है रेणु, अमिता और संगीता की और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गुवाहकण, प्रिंस एकांश सुमित गुहाणकर, कुमारी ध्वनि गुहाणकर और परी और मेहरेनगर उमरखेड़े महाराष्ट्र से ईमेल भेज रहे हैं। अभिजीत गुहाणकर, राही सरिता गुहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गुहाणकर और लाडला टुक टुक गुहाणकर और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा सरिता अभिजीत जी। और अगली मेल हमारे पास आई है, ये मेल भेज रहे हैं आपके गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं और ये लिखते हैं खुश रहो खुशियां बांटो। बहुत सही बात है, बिल्कुल हमें ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और खुशियां जो हैं बांटते रहना चाहिए ताकि सब माइंड जो है हमारा फ्रेश रहे। नेक्स्ट हमारे पास मेल आई है, ये मेल है ये नमस्कार कहते हैं हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है मोहम्मद यासीन अनजान की, साइमा नवाज की, हसन नवाज की, बाबू अहद की, मिफ्रा नवाज की, बेबी चाहत सदिया और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, आपका तहदिल से स्वागत है एफएम शिमला पर। और इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये कालका से भेज रहे हैं और जो पहले वाला मैसेज था ये था सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, तो कोई भी गीत सुनना चाहते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। आपकी मेल्स को शामिल करने का हमारा जो प्रयास रहता है कि ऐसी कोई मेल ना हो जो छूट जाए,

इसी बीच पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक मैसेज कर रहे हैं। कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, तह दिल से स्वागत है आपका अनिल जी FM शिमला पर, क्योंकि ये है दिल की आवाज़ भी सुन ईमेल बेस्ड प्रोग्राम। इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है, नमस्कार राधे राधे, ये फजिलका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिव्यांशी खेड़ा ये मैसेज कर रहे हैं। कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, तब तक हम आपको सुनवाएंगे। थोड़ी मेल शामिल करने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दुर्गा चौक जूनापानी सनावत मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल बडोले, साहिल सुमन बडोले, विशाल हरिओम, भावना बडोले और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है, नमस्कार कहते हैं हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, तो ये भी कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। और इसी बीच अगली जो मेल हमारे पास आई है वो मेल है रत्न की, प्रकाश की और रविंदर की, और ये सुनना चाहते हैं इश्क मूवी का गीत, तो आपको सुनवाते हैं इसी बीच इश्क मूवी का गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत अन्नू मलिक का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 MHz FM शिमला के संग।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज भी सुन, ईमेल बेस्ड प्रोग्राम। और अगली मेल जो हमारे पास आई है, वो मेल हमारे पास आई है, ये कहते हैं प्रसारक महोदय आदाब, हमारी तरफ से भी आपको आदाब। और मेल भेजने वाले हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी से, सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है एफएम शिमला पर। और इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है बिट्टू की, रनीता की, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। इसी बीच मोनिका सिंह हमें मेल भेज रही हैं, गुड इवनिंग सर, मैं मोनिका सिंह, आप अपनी चॉइस का कोई भी गीत सुना दीजिए, और आपने जो है अपना एड्रेस नहीं डाला है, प्लीज़ मोनिका जी अपना एड्रेस, जब भी आप मेल भेजें तो अपना एड्रेस ज़रूर डालें, ताकि हमें पता लगे कि आप कहाँ से मेल भेज रहे हैं। तो मोनिका जी आपका स्वागत है एफएम शिमला पर। इसी बीच हमारे पास मेल आई है विरोचन पुरी की, और ये मेल भेज रहे हैं कॉटेज सुनाम पंजाब से, मिस्टर विरोचन पुरी, मिसिज भारती पुरी, डॉक्टर के आर पुरी, मिसिज शोभा पुरी, मिसिज सरोज बाला, डॉक्टर सौरभ ज्योति और पमिका रिद्धि पुरी, मास्टर वहीन पुरी और ज्योति इलाश, ये मैसेज कर रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं। हमारी तरफ से भी आपको हम स्वागत करते हैं आपका विरोचन पुरी जी, और आपको गीत सुनवाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है गंगाधर येमकर, प्रमोद येमकर, प्रदीप येमकर, ये मेल भेज रहे हैं मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, आपका स्वागत है एफएम शिमला पर। इसी बीच गंजड़ू वारा से शमसूल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनाम खान और अनु खान, ये भी मेल भेज रहे हैं, आपका भी स्वागत है। एक तो समय का जो काफ़ी अभाव होता है, क्योंकि आपकी जो मेल्स हैं वो लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर आती जा रही है, और इसी तरह से जो आपकी मेल्स का जो इशारा है वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए कुछ खास लगता है। इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, आपका स्वागत है। कोई भी गीत आप सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। इसी बीच चिरमरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एफएम शिमला पर। इसी बीच हमारे पास मेल आई है, मेल करने वाले हैं पूनम गंगेजा, राम राम जी, प्लीज़ एनी सॉन्ग कोई भी सुनवा दीजिए, सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल, प्रिया और दिशानी और निमित, बिल्कुल आपको सुनवाते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। और इसी बीच अगली मेल हमारे पास आई है, ये मेल भेज रहे हैं अमित और शिशु, और ये भेज रहे हैं मेल सोलन से, और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। प्रकाश पोहनकर जो इनकी अगली जो आई है मेल, और ये है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार, आपका भी स्वागत है एफएम शिमला पर। तो आपकी मेल्स की कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हम शामिल करें, और कहीं छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है, और ऐसी कोई मंशा नहीं होती कि आपकी हम मेल शामिल ना करें। इसी बीच मलियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीव यम जैन, आप कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। इसी तरह जावेद शगुफ्ता, अंजुम

गुमला झारखंड से ये मेल भेज रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। और नेक्स्ट मेल हमारे पास आई है, ये है चिरमरी कुरासिया से, कालरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सोहदर सिंह। तो आप सभी का स्वागत है FM शिमला पर, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी सभी मेल जो हैं शामिल कर लें। इसी तरह विकी सिंह की मेल हमारे पास आई है और जलंधर से ये मेल भेज रहे हैं, आपका भी स्वागत है विकी सिंह जी। और नेक्स्ट मेल हमारे पास आई है जाकिर मुलाणी की, सौम्या की, सुबान की, समीर की, सलमा की, मुमताज़ की, दिलशाद की, नसीर की, और ये मेल भेज रहे हैं और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको सुनवाते हैं। तो आपकी नज़र फिल्म है कुछ कुछ होता है, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत।

और इसी बीच मेल का जो पिटारा है वो लगातार हमारे पास आ रहा है। मेल भेजने वाले हैं पटियाली रोड गंजड़ू वारा से उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा हबीबा, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कुछ कुछ होता मूवी का गीत। और इसी बीच नेक्स्ट मेल है अन्नू की, प्रियंका की और इंद्रा की, ये मेल भेज रहे हैं कालका हिमाचल प्रदेश से। इसी बीच नेक्स्ट मेल हमारे पास आई है रेनू की, मोनिका की, आपका भी स्वागत है एफएम शिमला पर, और आप मेल भेज रहे हैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से।

और अगली मेल हमारे पास पंकज शर्मा की, और ये है, भेज रहे हैं मेल सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जग्गी डुआ जी राम। हाँ, हमारी तरफ से भी आपको राम राम, और बने रहें FM शिमला के साथ। आपका स्वागत है पंकज जी। और आज दिल की आवाज़ भी सुन ईमेल बेस्ड प्रोग्राम में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है और समय के साथ सभी को चलना पड़ता है।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं गजलें। कार्यक्रम की पहली गजल पेश कर रहे हैं मेहंदी हसन की आवाज में।

0: शेर है।
1: तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग,
0: तेरी हर चाप से यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया, आहट आहट को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, यानी खुशी कि शायद महबूब आ गया, वो चराग हर चाप से चलते

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और सुन रहे हैं गजलें। जब गजल को संगीत और गायकी के साथ सुना जाता है तो इसके जज्बात और भी गहरे हो जाते हैं।

0: 103.7 FM शिमला पर आप सुन रहे हैं गजलें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आप सुन रहे हैं 103.7 FM और प्रोग्राम चल रहा है गजलें। इससे पहले आपने सुना राजकुमार रिजवी को, आइए सुनते हैं पंकज उदास को।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। अभी आपने सुना अनूप जलोटा को, आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल को।

0: एफएम शिमला पर गजलों में आज इतना ही।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। ये समय हो गया है सदाबहार नगमों का। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है जब जब फूल खिले। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और नंदा की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 एफएम शिमला पर।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में। फिल्म का गीत आवाज है लता मंगेशकर के, आन बख्शी के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज अत्यंत सुरीली और कोमल थी, जिसमें हर शब्द का उच्चारण एकदम स्पष्ट होता था।

0: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, और मीठे मीठे गीतों का संगम रहेगा इस प्रोग्राम में आपके लिए। अगला गीत फिल्म मेरा साया से, आवाज़ आशा भोसले की है, बोल हैं राजा मेहंदी अली खान के और संगीत मदन मोहन का।
1: झुमका गिरा रे

0: आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं, फिल्म है तेरी कसम, आवाज़ है मुकेश की, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जय किशन का।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म है दो बदन, आवाज है आशा भोंसले की, बोल शकील बदायूनी के और संगीत रवि का।

एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: शास्त्री से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे।

0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security.